कई बार हम सोचते हैं कि यार कोई हमारा साथ दे ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारा साथ तो दे हाँ। बट यू नेवर नो, बहुत सारे लोग बिना किसी सपोर्ट के अपनी लाइफ में कितने आगे बढ़ चुके हैं। हाय, मैं आरजे अनुपम, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपके साथ। एंड अभी 2-4 महीने पहले की बात है और मैं सिरानगुन रोड की तरफ गई हुई थी एंड वहाँ पर जिस तरीके से छोटे छोटे काउंटर्स हैं ना, कॉफ़ी शॉप्स हैं एंड स्नैक्स शॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने कहा वाई नॉट कुछ ट्राई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मैं जहाँ पर गई और मैंने जिनसे सारा स्टफ़ लिया फॉर स्नैकिंग, तो मुझे पता चला कि वो अकेली विमेन जो है ना वो पूरा ऑपरेट करती हैं। उनके घर में जिनके फैमिली मेम्बर्स थे वो बाय द टाइम इवेंचुअली नहीं रहे, तो वो सिंगल हैंडली पूरा का पूरा मतलब अपनी लाइफ ऑपरेट कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं और अकेले ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही हैं। और उनके चेहरे पर कोई भी शिकन मैंने नहीं देखा, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस छोड़ के खुद को आगे पुश कर रही थी। हाँ, मतलब शी इज अल्फा यार अपनी लाइफ में। हमारे पास तो बहुत कुछ होते हुए भी हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, राइट? एनीवेज, आपकी लाइफ में भी आपने बहुत सारी अल्फा फीमेल्स देखी होंगी जिनको देखकर आपको महसूस हुआ कि ओ माय गॉड, मैं इनकी तरह क्यों नहीं, या फिर ये है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सो डेफिनेटली आप वो एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर कीजिए 9151893 पे व्हाट्सएप या टेक्स्ट करके, बिकॉज हो सकता है अक्रॉस द आइलैंड अल्फा मूवी, हाँ जी, आलिया भट्ट एंड शार्वरी स्टारर जो रिलीज हो चुकी है, इसको आप देख पाए हमारी तरफ से। फर्स्ट 10 जो इंटरेस्टिंग आंसर्स होंगे उन्हें मस्ती मीडिया नेटवर्क टिकट्स रिम्बर्स करके देने वाला है हमारी तरफ से। वो डेट होगी आपकी मूवी की, राइट? सो डेफिनेटली आप क्विकली अपनी लाइफ की अल्फा फीमेल्स की स्टोरीज भेज सकते हैं हमें 9151893 पर, आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: रहो। ये जो दूर के ढोल दिखाई देते हैं ना कि एक्टर्स की लाइफ में चकाचौंध ही चकाचौंध है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान। रियलिटी हिट्स डिफरेंट। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के मुंह से ना अपने जो रणबीर कपूर है ना उनकी तारीफें सुन ली हैं। हाँ, मतलब कुछ भी कहो आप, कुछ भी कहो आप, वो जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है ना उनके अंदर है, शायद उनके खून में है यार। इसी परिवार से हैं वो, फिल्म इंडस्ट्री से हैं वो। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगी, रिसेंटली एक डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, जिन्होंने रणबीर कपूर के साथ संजू मूवी बनाई थी। उन्होंने कहा संजू का किरदार यानी संजय दत्त का किरदार और मेकअप के लिए कम से कम 5 घंटे चाहिए हुआ करते थे रणबीर कपूर के लिए, और शूट जो है वो अर्ली 7 AM शुरू हो जाता था। तो रणबीर कपूर रात के 3 बजे, हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, रात के 3 बजे पहुंच जाते थे सेट्स पर मेकअप के लिए। ये प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है जब आप एक मूवी बना रहे होते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं आप। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, मिल जान, आती हूं मैं जस्ट इन शॉर्ट वाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text The Lion City Challenge to 91518963.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: यू नो व्हाट, अब ना बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके निकनेम नहीं रख रहा है। बिकॉज वो वाला जो चाव होता है, वो वाला जो एक होता है ना लगाव होता है, वो अब एक्टर्स के प्रति आ नहीं रहा है यार। सच्ची मतलब एक टाइम था कि हम किसी को ड्रीम गर्ल ऑफ बॉलीवुड कह रहे हैं, डिम्पल गर्ल ऑफ बॉलीवुड कह रहे हैं, किंग ऑफ बॉलीवुड कह रहे हैं, ना जाने क्या क्या नाम रखे जा रहे हैं। पर आजकल ना बाबा ना, किसी के पास टाइम ही नहीं है यार। लेकिन हाँ, अगर हम डिम्पल गर्ल ऑफ बॉलीवुड की बात करें, यानी कि प्रीति जिंटा, इन्होंने रिसेंटली कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। क्यों? क्योंकि ये चाहती है कि कानून इनके AI वीडियोस, इमेजेस, डीप फेक जो भी चीजें हैं ना, उन सबको हटवाए। एंड बाय द टाइम बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसे ऑप्ट कर रहे हैं, और मैं तो चाह रही हूँ कि यार आपको भी ये मौका मिले। हाँ, नहीं मतलब इन अ गुड सेंस कि आप इतने फेमस हो जाएं कि लोग आपके AI चीजें बनाने लगे। आज इन ऊपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.
4: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें.
5: आई लव यू रसना.
4: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन. Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtapes with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: अगर आपका कोई ट्रस्ट तोड़ने की जरूरत करे, है ना, आपकी कोई खुशियां छीनने की कोशिश करे, तो समझ जाना, नहीं समझ ही जाना कि ये वाला जो इंसान है ना, ये मुझे लेकर इनसिक्योर फील कर रहा है। बिकॉज आजकल रियल एडवाइस देने वाले लोग तो बहुत कम बचे हैं। रेयर केसेस में आपको रियल जेन्युइन लोग मिलेंगे, बाकी तो आपका फायदा उठाने वाले ही मिलेंगे। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड अगर मैं फिल्म मेकर एसएस राजा मौली की बात करूं, जिन्होंने बाहुबली मूवी से 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके अक्रॉस द ग्लोब एक नई छाप बना ली थी, उन्होंने बोला कि जिस दिन मूवी रिलीज हुई थी ना, उस दिन भी मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि गलती कर रहे हो तुम ये मूवी रिलीज करके, कोई नहीं देखेगा, ना ना ना ना ना ना ना। और फिर आपको पता है रेस्ट इज हिस्ट्री। तो पॉइंट इज कि यार, आप जब बहुत कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हो ना, तो कोई ना कोई तो आता है, नहीं नहीं सब कुछ बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई तो आता है, सो डोंट रिलाई ऑन दैट। मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, और भी इनसाइट्स और भी बातें जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

बिल्कुल बिल्कुल, को करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपको बोलना बहुत ज्यादा पसंद है तो मस्ती मीडिया नेटवर्क आपको बनाएगा आरजे। हाँ जी, हमारी तरह अगर आपको इन स्टूडियो एक्सपीरियंस के साथ, इन स्टूडियो सारी चीजें प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ आरजे बनने की पूरी ट्रेनिंग चाहिए, द आरजे अकेडमी आ चुकी है एट मस्ती मीडिया नेटवर्क। हाँ जी, हम लेकर आए हैं आपके लिए, एडमिशन ओपन है और 12 आवर्स की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, बिगिनियर टू एडवांस्ड, फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस्ड सिलेबस होगा। आपको अगर इन चीजों में दिलचस्पी है और हमारे एक्सपर्ट ट्रेनीज से आप ये गाइडेंस लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहते हैं, मतलब आप अपने बाकी के काम करते करते ये सब करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी एज मिनिमम 14 ईयर्स तो होनी चाहिए, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं द आरजे अकेडमी। आरजे अनुप्रभा आपके साथ है मस्ती मीडिया नेटवर्क के ऑफकोर्स रेडियो मस्ती शो पर। डोंट गो एनीवेयर, क्विकली एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप हमें ईमेल भेजिए info@radiomasti.com.sg।

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharwari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta hai.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
6: जीजी
5: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com. प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com.
6: GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: आजकल एक्टर्स इतने ज्यादा इंटरव्यू नहीं दे रहे जितने ज्यादा डायरेक्टर्स दे रहे हैं, और जब वो आते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए तो भाई एक्टर्स की बुराइयां करके जाते हैं। मैं बुराई तो नहीं कहूंगी बल्कि रियलिटी चेक देकर जाते हैं। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड रियलिटी चेक में किसी डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन जी की पोल खोली है। नहीं, पोल इन अ गुड सेंस, मतलब अच्छी तरीके से बताया है कि अमिताभ बच्चन कैसे हैं। मतलब अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्स हैं जो खुद की वैनिटी वैन लेकर आते हैं, खुद के स्पॉट बॉय लेकर आते हैं, खुद के मेकअप मैन और खुद के ड्राइवर लेकर आते हैं, बिकॉज ये लोग करोड़ में चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये एक्सपेंसेस तो एक्टर्स खुद अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे, मतलब 99% ऐसे ही एक्टर्स हैं जो करोड़ चार्ज भी करते हैं और उसके बाद उन्हें ये सारी सहूलियत भी चाहिए होती है, उन्हें असिस्टेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये वाली जो बातें हैं वो अंदर से निकल कर आई हैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, और भी बातें और भी गाने लगातार मेरी जान।

0: हार दे रही तू,
1: हार दे रही तू, हार दे रही तू, हार दे रही तू, हार दे रही तू।
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: They were not chosen. They were created.
4: उसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
5: Alpha.
3: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
6: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई।
3: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
5: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
3: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment.
7: राज की बात बताऊं? मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
8: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: धीरे धीरे से ये जो कहा जा रहा है ना कि एआई नौकरी खा जाएगा, भाई ये बात रियलिटी होती जा रही है। पूछिए कैसे? नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। इंसानों की गलतियां अगर एआई ढूंढ लेगा तो कौन एआई हायर नहीं करना चाहेगा, आप जरा ये बताएं। हाँ देखो, बाय द टाइम हर सेक्टर में एआई जो है वो एड ऑन किया जा रहा है कि मतलब ठीक है, दो का चार पैसा ले लिया जाए और एआई जो है वो बता दिया जाए, राइट? सो मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है और बताना चाहूंगी कि जब एआई का जिक्र आया है तो रिसेंटली एक केस इंडिया के छत्तीसगढ़ स्टेट का बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। वहां ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो पुलिस वालों की सैलरी थी ना, उसमें 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड निकल कर आया। पूछो क्यों? क्योंकि जब एआई असिस्टेंट के थ्रू ऑडिट किया जा रहा था फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो उसमें 2 करोड़ की चीजें गलत निकल कर आई हैं, जिसके

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वीर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Monday blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network, Singapore.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। इधर से खरीदो और उधर बेच दो, उधर से खरीदो इधर बेच दो, बस यही तो काम है। किसका? ब्रोकर्स का नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का। यही करते रहते ये लोग रोटेशन पे, इधर से उधर, उधर से इधर, फिर चौथी जगह, फिर पांचवी जगह, राइट। सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुप्रमसी, मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर मैं अक्षय कुमार की बात करूं तो अक्षय कुमार वन ऑफ द टॉप पर्सन है सेलिब्रिटीज में जो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और भी हैं एक्टर्स जैसे कि अभिषेक बच्चन ले लीजिए, जैसे कि अजय देवगन ले लीजिए, काजोल ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। बट अक्षय कुमार किस कंट्री में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया है, आप ये बताओ। हाँ चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। अक्षय कुमार ने रिसेंटली अपने 4 से 5 अपार्टमेंट्स जो है ना वो एक ही महीने के अंदर बेच दिए हैं और अच्छा खासा करोड़ में प्रॉफिट भी अर्न कर लिया है। एंड बाय द टाइम मुझे पता है बहुत जल्द ये भी हमें पता चलेगा कि अक्षय कुमार ने रियल एस्टेट में नया इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इनका ये चलता रहता है, मतलब पीनट्स फॉर हिम। या ऑन दिस नोट मी आर जे अनुप्रा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अब मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
3: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
3: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
5: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
3: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
6: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
7: मुझे चांद पे ले चलो।
6: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
7: रात अकेली है।
8: जोश में रहो, जोश में रहो।
9: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Dancing far and style.
1: Slow down, boys.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
6: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो सिंगापुर, गुड मॉर्निंग। यू नो व्हाट्स द क्वेश्चन टुडे? बहुत ही सिंपल। हाँ, आते के साथ ही सवाल पूछूंगी। तो मेरा शो, मेरा मन, आपको क्या? नहीं भाई, आप ही के लिए माफ कर दो मालिक। वॉलेट या फिर कॉफी रेडी है या नहीं? वैसे पता है क्या, वेंसडे का ना एक अलग ही स्वैग होता है। मंडे की टेंशन निकल चुकी होती है, फ्राइडे भी थोड़ा सा दूर होता है और हम सब बस वीकेंड के डायरेक्शन में स्टेडिली लेफ्ट राइट लेफ्ट। यस, हम सब वीकेंड के डायरेक्शन में जुलाई में मार्च कर रहे होते हैं। तो इस बिजी वेंसडे को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाया जाए। मैं हूँ आरजे मुग्धा आपके साथ सिंगापुर से लाइव और आप सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट विद योर तिरगिथा मुग्धा। अगली कुछ देर आपके साथ मैं रहने वाली हूँ। सिंगापुर की इंटरेस्टिंग अपडेट होंगी, बॉलीवुड का फुल ऑन तड़का होगा, इंटरनेट की कुछ अनबिलीवेबल बातें होंगी एंड ऑफकोर्स आपके पसंदीदा गाने भी तो होंगे। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप कैब में हो, कॉफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक एंजॉय कर रहे हो, टेरेस पे बैठ के नजारे देख रहे हो या फिर रेडियो को निहार रहे हो जैसे मैं दिखाई दे रही हूँ। हाय, आप कितने प्यारे

स्टे राइट देयर व्हेयरएवर यू आर, क्योंकि अगले 3 घंटे बहुत सारी मस्ती होने वाली है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. जोश में रहो.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार।
2: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hey, hi, welcome back. This is me, Mugda. आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। एक बात बताइए, रिलेशनशिप में आपको अभी तक की बेस्ट एडवाइस क्या मिली है? मैं बताती हूँ, सिंगापुर पुलिस ने अभी सबसे बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस दी है। दो नाव पे सवारी करना बहुत बुरी बात है। समझ रहे हैं आप, दो नाव पे सवारी। लेकिन सिंगापुर पुलिस आपको रिलेशनशिप की एडवाइस क्यों दे रहा है? एक मिनट, ये कोई रिलेशनशिप की एडवाइस नहीं है बच्चा, ये एडवाइस दरअसल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आई है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि रुक करके आप सोचते, चलो कोई बात नहीं, एक रिप्लाई कर देता हूँ ट्रैफिक सिग्नल पे, या एक वीडियो देख लेता हूँ, इंस्टा चला लेता हूँ, इसे करते हो ना। लेकिन अब अगर आपको फोन देखते चलाते तो छोड़ो, अगर हाथ में लेते भी देख लिया गया, जो कैमराज लगे रहते हैं यहाँ वहाँ इधर उधर, तो इट विल बी एन ऑफेंस। हाथ में लिया फोन तो बस काम खत्म। हाँ, मैप देखना है, माउंट कर लो, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और, जो कैमराज है ना उनसे नहीं, अगर किसी ने आपको फोन चलाते हुए भी वीडियो बना के भेज दिया पुलिस को, या फोन देखते हुए वीडियो बना लिया, फोटो खींच ली, तो भी आपको पुलिस इस क्राइम के लिए दोषी मानेगी। पर एक मिनट, अगर आपके आसपास कोई है जो आपका फोटो या वीडियो बना रहा है, पहली बात तो कंसेंट के बिना ही करना गलत बात है, एंड सेकेंडली अगर वो ये कर रहा था, मतलब उसके भी हाथ में फोन है और आपके आसपास है, मतलब ट्रैफिक सिग्नल के आसपास ही है, तो वो ये काम कैसे कर सकता है? मेरे पास ब्योमकेश बख्शी और चाचा चौधरी दोनों का मिक्स दिमाग है, कुछ ज्यादा ही चलता है। खैर, तो ध्यान रखिएगा अगली बार से ये जो रूल्स आ रहे हैं ये

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
2: Alpha.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharwari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
2: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ.
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
6: जीजी
5: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com. प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com.
6: GG Mart, your personal grocer.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: मुझे ना हमारे सिंगापुर से एक कंप्लेंट है, ये लोग हम जैसे नॉर्मल लोगों को ओवरथिंक करवा देते हैं यार। हम संडे को ही नहीं सोच पाते कि शाम में क्या करेंगे, संडे की शाम में क्या करेंगे, मंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये लोग 2035 और उसके बाद के ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग में लग के हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे भाई। 2035 बाय गॉड क्या बात कर रहे हो। यू नो अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि सिंगापुर 800 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा ट्रांसपोर्ट रिसर्च और इनोवेशन में। नाम थोड़ा सीरियस है लेकिन काम बड़ा इंटरेस्टिंग, यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्लीनर ट्रांसपोर्ट और ऐसे सॉल्यूशंस जो ना आने वाले सालों में ट्रैवलिंग को और ज्यादा सेफ और आप ये भी कह सकते हो थोड़ा डिफरेंट बना सकें। मतलब हम गूगल मैप से पूछते ना भाई शॉर्टकट बता दे, और सिंगापुर इंजीनियर से अब पूछ रहा है फ्यूचर का रूट बता दो, कौन ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है बताओ बताओ। इसीलिए शायद यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, विजन भी बहुत ही

आप इतना ओवरथिंक ना करें क्योंकि हमारी सरकार बैठी है ओवरथिंक करने के लिए, बिकॉज उनका ओवरथिंक करना काम आएगा. आप ओवरथिंक ना ही करें तो बेहतर है, आप बीमार हो जाएंगे. समझे?

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक शॉप में सिर्फ एक चीज लेने कभी गए हो या ऑनलाइन आपने कोई शॉपिंग शुरू की हो और उसके बाद मतलब ऐड टू कार्ट करते करते और चेकआउट करते करते आपको ऐसा लगा कि ये बिल थोड़ा ज्यादा हो गया है ना? अक्सर ऐसा होता है जब मैं जीजी मार्ट ऑनलाइन पे शॉपिंग करती हूँ। भाई गॉड, ऑलमोस्ट एक्चुअली हर बार ही ऐसा हो जाता है। एंड दिस टाइम यू नो मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा दोस ब्यूटीफुल क्यूट जामुन ट्रायंगल्स। नाम सुनते ही ना मेरे दिमाग में से क्यूरियोसिटी आई, मन में भी आई, टेस्ट तो करूं कि आखिर है क्या। यू नो जामुन ना यानी ब्लैक प्लम का एक बहुत ही रिच फ्लेवर, इंडिया में तो बहुत आयत में पाया जाता है, बहुत आयत में। बड़े बड़े पेड़ों जामुन गिरते रहते हैं और बच्चे, छोड़ो मैं आपको क्यों कहानी सुना रही हूँ, वो बाहर से हल्का सा क्रिस्पी होता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, मेल्ट इन माउथ होता है, ट्रेडिशनल इंडियन मिठाई का टेस्ट होता है। एंड यू नो वॉट, इसको खाने के बाद आपका मुंह पर्पल हो जाता है। हाँ, पर यहाँ पे दीज जामुन ट्रायंगल्स एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ हैं। चाय के साथ आप ले सकते हो, गेस्ट आ रहे हो तो आप उनको मुंह मीठा कराने के लिए सर्व कर सकते हो अगर आप चाहें तो। अरे इट्स अ परफेक्ट कंपेनियन, आपके साथ कहीं भी आ जा सकता है। सो अगर मंचिंग का मूड है, हेल्दी मंचिंग का, कृषिवल की जो रेंज है अपरंपार है। आई नो मेरी हिंदी अच्छी, थैंक यू। इट्स फार्म फ्रेश, 100% ऑर्गेनिक, सस्टेनेबली पैक्ड है, ड्राई फ्रूट्स, क्रंची मैकेडेमिया नट्स, प्रीमियम कैश्यूज, रोस्टेड कैलिफोर्निया आमंड्स, ओ माय गॉड, यू नेम इट दे हैव इट। पंपकिन सीड्स, या ऑफ कोर्स उनके पास ये भी है। तो अगली बार जब भी आप जीजी मार्ट पे ऑनलाइन जाएं ना, क्योंकि ऑनलाइन है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, शॉपिंग लिस्ट पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, काम की चीजें लेके जरूर बाहर आइए, यही तो मजा है शॉपिंग करने का। और जामुन ट्रायंगल्स, ये तो मेरा फेवरेट हो चुका, अभी ट्राई करके देखना, बहुत ही मजेदार है, कमाल लगेगा। यस, जीजी मार्ट ऑनलाइन.com मेरा फेवरेट मंचिंग प्लेस जिसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना है। यस।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाँ, इस शो के दूसरे आर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो हैव यू एवर नोटिस्ड, हम थैंक यू बोल देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, कई बार बोलते हैं पर बोल देते हैं, लेकिन तुम मेरी स्ट्रेंथ हो ये हम बहुत कम लोगों को बोल पाते हैं। थैंक यू फिर भी अक्सर बोल देते हैं ना, बहुत कम लोगों को बोलते हुए देखा हमने, हमने कभी बोला है। और शायद हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो उनकी स्ट्रेंथ होता है, जो हमारे लिए अल्फा होता है, लेकिन हम उसको कभी ये बता नहीं पाते। वो बिना कोई मेडल जीते हमारे लाइफ में चैंपियन होता है, वो बिना कोई केप पहने एक सुपर हीरो है, राइट? वो बिना अल्फा कहे ही सबसे बड़ा अल्फा होता है। इसीलिए रेडियो मस्ती सिंगापुर लेकर आए बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव, द अल्फा वुमन कॉन्टेस्ट, राइट? आपको बस हमें व्हाट्सएप करना है 9151893 पर कि आपकी लाइफ में वो अल्फा वुमन कौन है। आई नो बहुत सारे लोग इमोशन में आके मॉम लिखेंगे, ये ऑफ कोर्स मॉम है, पर मॉमीज आपकी भी लाइफ में तो कोई अल्फा वुमन होगी ना। अगर आप सबकी लाइफ के अल्फा वुमन है तो आपके लाइफ के अल्फा वुमन कौन है? सोचो यार, मॉमीज तो ऑफ कोर्स वो तो डिफॉल्ट अल्फा वुमन है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट है कि नहीं? डाडा सुपर हीरोज हम सब जानते हैं, मॉम आर अल्फाज, लेकिन फिर भी आप उनकी कहानी हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि ना वो आपकी इंस्पिरेशन है तो कईयों के हो सकते हैं। क्यों उनके बिना आपकी लाइफ वैसी नहीं होती जैसी आज है? क्यों आपकी लाइफ में उनकी वजह से कोई ऐसा ट्विस्ट आ गया जो आपने कभी सोचा नहीं था? क्यों आपकी लाइफ उनसे इतनी इंस्पायर्ड है कि आप सब कुछ इग्नोर करके उनको फॉलो करते? क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों? और हम उन कहानियों को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम उनको पैसा वसूल बनाएंगे। पूछो कैसे? अल्फा देख ली, वेरी गुड। तो अपनी लाइफ की अल्फा वुमन और जो आपने अल्फा देखी है उस टिकट का एक फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो। अगर आपकी अल्फा वुमन हमारी टॉप 10 एंट्रीज में आ गई, द फर्स्ट टॉप 10 एंट्रीज, तो आपके टिकट का पूरा पैसा रिइंबर्स हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? यस, देख ली ना फिल्म? गुड, टिकट रखा है ना? यस, टिकट इज द कैच। तो जल्दी से हमारे साथ शेयर करिए एक ऐसी वुमन की कहानी जिसको अप्रिशिएट करने के लिए आप उसको अल्फा वुमन कहें तो गलत नहीं होगा, जिसने शायद कभी खुद के लिए तालियां मांगी नहीं थी, लेकिन अब हम उन्हें तालियों का हकदार बनाएंगे। भेजिए 9151893 पर आपकी अल्फा वुमन। वैसे हमारे ऑफिस में भी एक अल्फा वुमन है जिनको बड़ी तारीफें मिल रही हैं। शी इज वन विदाउट द केप एंड द

0: They were created.
1: इसकी माँ का नाम जान की था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अगर मैं कहूँ ओह माय डॉग प्लीज मुझ पे केस मत करना। हाँ, दिमाग में पहले क्या आएगा, एक मिनट मुग्धा तुम गलत बोल गई। आई नो पता है गलत भी है पर सच भी है। ओह माय डॉग, ये तो सच हुआ ना। हर घर का नॉटी पेट सबका फेवरेट, सबका सबसे प्यारा दोस्त। भाई डॉग्स आर बेटर देन ह्यूमंस, जिनके पास डॉग्स है सब यही कहते हैं। हाँ मुझे पता है ओ माय गॉड इज द राइट वन, पर अब ये ओ माय डॉग है तो मैं क्या करूं। इस बार ओ माय डॉग का एक्सप्रेशन नहीं, बॉलीवुड की नई फिल्म है जिसका मैं आपको नाम बता रही हूँ। यस, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। OMG यानी ओ माय गॉड के राइटर और डायरेक्टर अमित राय जो हैं, एक बहुत ही इमोशनल फैमिली एंटरटेनर लेकर के आ रहे हैं जिसका टीजर अभी थिएटर्स में दिखाया जा रहा है। 31 जुलाई को रिलीज होगी ये फिल्म और इसमें नजर आने वाले हैं पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा और चाइल्ड एक्टर माही। ऑनेस्टली पंकज त्रिपाठी किसी फिल्म में अगर है, ये सुन के ही मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और मेरे देखने की ललक मुझे थिएटर्स तक लेके जाएगी ही जाएगी। एंड हाउ कैन आई इवन इग्नोर पवन मल्होत्रा, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वंस यार बॉलीवुड के पास जो है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फिल्म के असली हीरो एक नहीं बहुत सारे हैं, बिकॉज इस फिल्म में बहुत सारे डॉग्स हैं, लाइक 250 से भी ज्यादा डॉग्स नजर आने वाले हैं। बिकॉज ये फिल्म ही इंसानों और कुत्तों के बीच में एक अटूट रिश्ते के बारे में है। वेट अ मिनट, मुझे एक फिल्म याद आ रही है, चिल्लर पार्टी, उसमें भी पंकज त्रिपाठी थे। हालांकि वो हीरो नहीं थे, हीरो तो कुत्ता था फिल्म में, लेकिन वहां पे भी बच्चे थे, कुत्ता था, रिलेशन थे और पंकज त्रिपाठी थे। सो कहीं ये चिल्लर पार्टी 2 को नाम बदल के तो नहीं लेकर के आए।

आई एम ऑल एक्साइटेड टू सी द फिल्म. 31st को रिलीज हो रही है, यहाँ होगी थी मुझे पता नहीं है, पर जब भी मौका मिलेगा मैं ये फिल्म देखूंगी जरूर. या आप सुन रहे मुग्धा को, स्टे ट्यून्ड.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: They were not chosen. They were created.
4: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
5: Alpha.
3: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
6: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
3: Alia Bhatt and Sharwari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
7: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
3: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: बॉलीवुड आर में है और बिना ड्रामा के कोई आर आगे बढ़े, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आजकल फिल्में बनती हैं 200-250 करोड़ के बजट में, राइट? लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि किसी की फिल्म के बजट से ज्यादा उस पर केस ठोक दिया गया है तो जी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये बन नहीं पा रही है। पर कभी कभी लगता है पिक्चर से पहले कोर्ट रूम का इंटरवल हो जाता है। क्या हुआ है कि कंगना रनौत की क्वीन 2 जो है ना रिलीज तो हुई नहीं है, पर उसके भी पहले लीगल कंट्रोवर्सी में आ गई है। द वेरी फेमस स्टूडियोज फैंटम स्टूडियोज उसने 250 करोड़ का लॉसूट फाइल कर दिया है। दे से कि क्वीन फ्रेंचाइजी की सीक्वल राइट्स में उनका हिस्सा है और क्वीन 2 एक अनऑथराइज्ड सीक्वल है। इस बात को लेकर के मामला फिलहाल कोर्ट के दरवाजों तक पहुंच चुका है। बॉलीवुड में कोई ड्रामा ना हो तो बॉलीवुड की फिल्में आजकल अधूरी लगती हैं। वैसे बॉलीवुड है बड़े कमाल की जगह, कभी ट्रेलर रिलीज होता है, कभी टीजर रिलीज होता है, फिर लीगल नोटिस आ जाते हैं, कभी ट्रेलर पे, कभी टीजर पे, कभी पिक्चर पे, कभी नाम पे। माय गॉड, आगे आगे देखें होता है क्या। व्हाट अ नाइस नेम फॉर एनी मूवी, है ना? ऑडियंस पहले थिएटर का टिकट बुक करेगी या वेट करेगी कोर्ट की अगली हियरिंग का, उसके बाद आगे के बारे में सोचेगी, ये तो मुझे नहीं पता। पर क्वीन 2 डिस्कशन में आ चुकी है, ये मुझे पता है।

0: B were not chosen.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharwari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: बॉलीवुड में ना शादी सीजन चल रहा है जी। एक तरफ आमिर खान विद द थर्ड थ्री अपनी नई वाइफ, वॉट थ्री वॉट थर्ड नथिंग, अपनी नई वाइफ गौरी के साथ शादी कर चुके हैं। एंड अनदर शादी इज यस अंशुला। यू नो एक बात माननी पड़ेगी, सेलिब्रिटी ब्राइड्स ना सिर्फ दुल्हन नहीं बनते हैं, दे आर द ट्रेंड सेटर्स। अब अंशुला को देख लो ना आप, सोशल मीडिया पर उनका ब्राइडल लुक काफी वायरल हो रहा है। शी इज लुकिंग अडोरेबल, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पर सिर्फ खूबसूरत नहीं लग रही है, आजकल जहाँ पे सेलिब्रिटी ब्राइड्स ना आइवरी और पिस्टल एंड पाउडर एंड फलाना गिमा का शेड्स चूज कर रहे हैं, अंशुला ने ट्रेंड सेट किया है और हट के कुछ सिलेक्ट किया है। शी हैज गॉन फॉर अ कोरल पीच एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा उन्होंने पहना, और विद अ वेरी एलिगेंट कुंदन ज्वेलरी, बहुत ही नेचुरल लाइट मेकअप था। एंड फैशन एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि उनकी सिंप्लिसिटी इज वेरी रॉयल, वेरी एलिगेंट और एक परफेक्ट बैलेंस है ओवरऑल लुक का। बट पर यहाँ पे सिर्फ उनका ये ओवरऑल लुक चर्चाओं में नहीं है। यू नो व्हाट द मोस्ट इमोशनल पार्ट विद होल लुक, उनकी लेट मदर मोना कपूर की चुनरी। अंशुला ने अपने ब्राइडल लुक को कंप्लीट किया है विद उनकी मामा की चुनरी। सोचिए फैशन ट्रेंड तो बदल जाएगा, सीजन तो छोड़ो अगले एक महीने में बदल जाएगा, लेकिन माँ की निशानी वो कभी नहीं बदलती। उसकी वैल्यू इज नेवर आउट ऑफ फैशन, दैट इज आइकॉनिक, हमेशा आपके साथ रहती है। वैसे माँ की निशानी से मुझे एक फिल्म याद आई, थ्री इडियट्स, राइट? आमिर खान, आई नो थ्री इडियट्स, माँ की निशानी, शादी, थर्ड वाइफ। वेल हाँ, कभी कभी एक छोटी सी इमोशनल डिटेल जो है ना पूरी शादी को मेमोरेबल बना देती है। एक ऐसी डिटेल जो शायद वो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगी और वो कभी उनकी एल्बम से आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। विद ऑल द बेस्ट विशेज अंशुला, नई जर्नी की बहुत सारी शुभकामनाएं रेडियो मस्ती की तरफ से भी।

और आमिर जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी शादी के लिए. वेल, उन्होंने भी ट्रेंड सेट किया पायलिया पहन के. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. जाओ सर्च करो क्यों पहनते हैं पायल शादी में. सब मैं बता दूं,

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, शो के थर्ड एंड लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत। यू नो व्हाट, इंजीनियरिंग का एक रूल होता है, नया मत खरीदो, जुगाड़ करो, मतलब कहीं ना कहीं से दिमाग लगाओ। और अगर मिडिल क्लास इंजीनियरिंग की बात करें, डेफिनेटली नया मत खरीदो, जुगाड़ लगाओ। इंटरनेट पर एक ऐसा ही बहुत ही कमाल का जुगाड़ ना वायरल हो रहा है, और ये देखकर मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ गए। मैंने फोटो भेज दी इंडिया, हालांकि आया वहीं से था, पर मेरा फर्ज बनता है उधर बताने का। एक होम ओनर ने सोचा, एक एसी को दो रूम्स में क्यों नहीं ठंडा करवा सकते, काम डबल कराओ यार, सब करते डबल शिफ्ट। बस क्या था, दीवार में उसने खोल किया, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया, और पता है 3D प्रिंटेड फिटिंग्स का इस्तेमाल करके एसी की ठंडी हवा सीधी अगले कमरे में भेज दी। एक एसी से डबल काम, तो बिल डबल लेगा ना एसी, पर चलो छोड़ो वो अलग बात है, बजट तो बच गया बंदे का। दूसरा रूम ठंडा भी हो गया, यह सही है। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आइडिया बहुत ही क्रिएटिव है, लेकिन एसी जिस रूम के साइज के हिसाब से डिजाइन होता है ना, उसकी हवा अगर दो जगह बांट दी जाए तो एफिशिएंसी कम हो जाती है और बिल बढ़ सकता है। देखो बात आपकी सही है, लेकिन बिल कितना भी आएगा एक एसी के बराबर तो नहीं आएगा, और कितना भी आएगा दो एसी चलाने के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो दो एसी का खर्चा प्लस दो एसी की बिजली का बिल का खर्चा, उससे अच्छा है एक एसी से थोड़ा ज्यादा काम करा के थोड़ा बिल बढ़ा ले, कॉस्ट एफिशिएंसी, यू नो। सो एक बात माननी पड़ेगी, जब मिडिल क्लास दिमाग लगाता है ना, इंजीनियरिंग मोड में आता है वो, तो ऐसे चीजें वायरल हो जाती है।

0: They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharwari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program uska junoon hai, aur jo bhi uske raaste mein aata hai, wo use maar deta hai.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
5: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अब हम आपको बताती हूँ, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए बट एक बार सिखा दो ना प्लीज। ये जो लाइन है ना, अगर मम्मी बोल दें तो सब मोमबत्ती की स्पीड से पिघल जाते हैं। यस, इंटरनेट पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है इस समय। एक बेटी ना अपनी माँ को ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा रही है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है अलग अलग वेबसाइट या किसी ऐप से कैसे करेंगे वो सब सिखा रही है, और वो मदर बहुत ही पेशेंटली स्टेप बाय स्टेप समझ रही है, मतलब उनकी मम्मी जो बेटी सिखा रही है उनकी मम्मी। और मम्मी पता है क्या कर रही है, वो सिर्फ सुन समझ नहीं रही है, उन्होंने हर एक स्टेप अपनी 2002 से संभाल के रखी हुई डायरी में लिखा भी है। शी इज नोटिंग इट डाउन, लिखती जा रही है ताकि अगली बार दोबारा बेटी को परेशान ना करना पड़े, पूछना ना पड़े। बिकॉज हमने हमेशा ये इमोशनल नोट सुना है कि बच्चे माँ बाप से बार बार एक ही सवाल पूछते हैं और माँ बाप बार बार उसका जवाब देते देते उनको बड़ा करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अगर माँ बाप बच्चे से एक सवाल दो बार कर ले तो तीसरी बार में बच्चे इरिटेट होंगे, क्या यार मम्मी समझ में नहीं आता है क्या यार। माँ जानती है कहीं ना कहीं, मुझे पता है जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरे बच्चे भी ऐसे करेंगे, मैं कुछ पूछूंगी ना, मैं लिखूंगी ना, मैं चलो छोड़ो। सो बेसिकली दिस रील इज वायरल राइट नाउ। सच कहूं तो हमारी जनरेशन ना गूगल पर सेव करती है और हमारी मदर जनरेशन डायरी में। वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन एक ट्रेजर की तरह सेव होता जाता है, संभाल के रखने। हम पासवर्ड भूल जाते हैं और वो 20 साल पुराने नोट्स भी ढूंढ लेती है। पर पता है इसकी बेस्ट बात क्या है इस ऑनलाइन वीडियो की? माँ के सीखने का जज्बा और बेटी का पेशेंटली सिखाने का जज्बा।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: They were not chosen.
4: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
5: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई।
1: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
6: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
1: बोर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd July आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: एक बात बताइए, कभी किसी ने आपसे कहा है कि यार तेरी वॉइस ना रेडियो पर होनी चाहिए यार, तू बहुत कमाल बोलती है हुँ? और फिर आप वो इंसान जो गाड़ी चलाते हुए आरजे से पहले पंच लाइन बोल देते हो, अगर माइक्रोफोन देखते ही आपके अंदर फिर से कुछ कुछ होता है तो अपने प्यार को अधूरा मत रहने दो, फिर भी मत रहने दो, इससे पहले कि आप कमाई किसी और अंजलि का हो जाए उसे अपना बना लो। वाह यार मुग्धा, ग्रेटो मैं। सी दिस इज फॉर यू। मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आए हैं मस्ती आरजे एकेडमी, साउथ ईस्ट एशिया के अपनी तरह की यूनिक आरजे एकेडमी, जहां पे आप हॉबी पैशन प्रोफेशन जिस भी रीजन से चाहे रेडियो जॉकी बनना आप सीख सकते हैं। बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, ट्रेनिंग इंडिविजुअल है। आप इन चीजों पर फोकस करें और आपको बहुत सी चीजें पता लग सकती हैं। एंड देन आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं radiomasti.com.sg पर मस्ती मीडिया एकेडमी के बारे में काफी कुछ है जिसको पढ़ के आप बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं कि हम और क्या क्या आपको सिखा सकते हैं और बना सकते हैं। वैसे सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको एक शो होस्ट करने का मौका मिल सकता है रेडियो सिटी पर लाइव। लाइव लेकिन सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका एक ब्यूटिफुल सा इंट्रो छोटा सा लेकर भेजना है info@radiomasti.com.sg पर। कौन जाने कल जिस आरजे को आप सुनते हैं वो आप खुद ही हो। यस
2: वो तोहरी लचके जब कमरिया सारा जिला ही।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: और बस आज के लिए इतनी ही मस्ती काफी है। बस एक बात याद रखिए, लाइफ में ना प्रॉब्लम्स कभी आउट ऑफ स्टॉक होती नहीं है, किसी की भी लाइफ में नहीं होती है। लेकिन रीजन टू स्माइल भी ना रोज नया नया स्टॉक करके मैं ले आती हूँ और अपने आप आ जाते हैं। स्माइल टू वाले रीजन की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हॉरर है। खैर, एक नजर आपके पास होनी चाहिए, नजरिया होना चाहिए। अगर आज के शो में कोई भी एक बात जिस पर आप मुस्कुरा दे हो, टिंग टिंग, किसी गाने ने आपका मूड बना दिया हो, किसी स्टोरी ने सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो मिशन है ना वो सक्सेसफुल हो गया है। राइट, मैं हूँ आज मुग्धा, अभी इजाजत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, थोड़ा पानी ज्यादा पी लीजिएगा, फोन थोड़ा कम स्क्रॉल कीजिएगा और गाड़ी चलाते वक्त तो बिल्कुल भी ना करिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा आप क्या करेंगे, लाइफ को थोड़ा ज्यादा लाइव कीजिएगा। अगले शो में हम फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ, नए गानों के साथ और फिर वही पुरानी दोस्ती के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और याद रखिए, स्माइल फ्री है, यूज करते रहिए।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: मंडे ब्लूज नॉट ऑन आवर वॉच। Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh Mera.
5: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
2: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक ठग सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
5: रहो। मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
2: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. Makes you smile. Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for encore show timings.
2: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
3: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे
4: कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: नाचने का मन है
3: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
5: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
6: आई लव यू रसना।
5: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.

0: राम, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
2: तुमको ले कर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो,
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेले है।
4: जोश में रहो।
5: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
6: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
7: Check it out.
8: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: वेंसडे की शाम को पूछो कि किस चीज में इतने ज्यादा डूबे हुए हो, तो जवाब यही मिलेगा कि भाई अभी मिड वीक ही पहुंचे हैं, काम में ही डूबे हुए हैं. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग. 5:00 हो चुके हैं यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पर लोग ट्यून इन कर चुके हैं और भी पहले से, और पूछ रहे हैं कि क्या है हाल चाल, विच इज सो वेरी नाइस, मेक्स मी फील नाइस. इस लंबे से दिन का यही तो वो राहत वाला पॉइंट होता है. आपको पता नहीं बट मेरा तो डेफिनेटली होता है. यू नो हाउ वेन यू हैव really long day and after that long day you kind of are like ki ha dube kahan hai friday kahan hai weekend kahan hai. No wonder we look forward to weekend so much, right? But that's the reality. Zindagi jo hai isi ka naam hai bandhu. और ये जिंदगी जीते जीते जो है बिल्कुल आगे यहाँ पर पहुंच चुके हैं. 3 घंटे यहाँ पे म्यूजिकल जिंदगी और बाकी अपडेटों के साथ अपनी गाड़ी को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, फिर बीच में थोड़ा सा आपको कुछ जितवाएंगे. एंड या दैट्स हाउ, मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है ना. सिंपल सी खुशियां जो हमें मिल जाती है कोई एक अच्छा गाना सुनने से, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने से, किसी से कुछ बात कर लेने पे, आपका मुझे हाय लिखकर भेज देने से. आपको तो खुशी होती है, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है. तो आओ खुशियां बांटे. म्यूजिक बढ़ाएं, म्यूजिक फैलाएं, प्यार फैलाएं, यही है वो काम. आई नो टू मच ज्ञान. नहीं यार सच्ची में, आप बताओ आपका दिन कैसा गया आज सुबह से, कि कैसा रहा, कैसे मतलब एकदम ताबड़तोड़ रहा, या फिर यू हैव हैड यू नो वेरी क्योटिक डे, या फिर इट वॉज जस्ट नॉर्मल जनरल रूटीनिश वाला जो डे होता है, या फिर किसी किसी का ऐसा होता है कि या जैसा मेरा आई थिंक कल या परसों था भाई वो दिन. और ये दिन आपको ये वाले तो स्पेशली याद रहते हैं जो मतलब एकदम ही कुछ भी सही नहीं हो रहा था उस दिन टाइम. बट एनीवेज वो गुजर गया, जो गुजर गया उसको पीछे रखते हैं और सीधा आगे बढ़ते हैं हमारे गानों की ओर. एंड यस, लेट द वेंसडे इवनिंग वाले जो ब्लूज है या जरा उधर घुमाना, हाँ उनको मैं जरा बाहर भेजने की कोशिश यहाँ से चालू करती हूँ. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए और वापस आइए. गुड इवनिंग.
2: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है. रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
0: जीजी
3: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
0: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर। नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
4: टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटिल एंड वाइब अ लॉट, बिकॉज वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर। मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
5: जिसका हम सभी को था इंतजार, क्या वो घड़ी आ गई? यस, वो घड़ी आ गई जब आपने ट्यून इन कर लिया है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। दैट्स राइट, ये आवाज है अंतरा की, जो कि यहाँ पर 5 बजे से, जी हाँ, बिल्कुल आपके साथ जुड़ी हुई है। बट विच और कौन सा वाला इंतजार की यहाँ पे बात चल रही है। आई थिंक राजकुमार राव को बड़े पर्दे पर देखे हो गया है ना, काफी वक्त हो गया है। एंड वी हैव बीन वंडरिंग व्हाइल देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज एंड इधर उधर का जो है सब कुछ रिलीज हो रहा है कि कहाँ है राजकुमार राव। वाज वन ऑफ द पीपल, जब ये ओटीटी नाम की जो चीज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, जब इसके बारे में इतना ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी और इतना ज्यादा इजी एक्सेस भी नहीं था, ही हैज बीन देयर उस टाइम से। लाइक अगर ओजी लेजेंड्स एंड मास्टर्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाए, राधिका आप थे, हमारे राजकुमार राव, दे हैव बीन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बट देन यस, वी कीप ऑन वंडरिंग कि भाई कुछ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो काफी हाईली एंटिसिपेटेड सौरभ गांगुली की बायोपिक, जिसकी बात हुई थी कि भाई राजकुमार राव को रोपिन किया हुआ है। गुड न्यूज कुछ ऐसी है कि फाइनली उसका फर्स्ट पोस्टर, दादा का पोस्टर बाहर आ गया है। गुरु, दैट इज राइट, मूवी का नाम ही है दादा। एंड दिस इज दैट मोमेंट जो कि उन्होंने दर्शाया हुआ है, जो कि सौरभ गांगुली का बड़ा ही वायरल फेमस मोमेंट है, जहां पे वो बिल्कुल शर्टलेस जो है अपना झंडा लहराते हुए एकदम वो खड़े होते हैं। बट फॉर सम रीजन इन दिस पर्टिकुलर पोस्टर, राजकुमार राव जो है वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। हालांकि आई एम श्योर द इमोशन इज समथिंग एल्स, बट देन शायद मैं ही उसको इंटरप्रेट वैसे कर रही हूं। That is that. So that makes me curious. Also the fact that Rajkumar Rao is coming back after such a long time. So that is again, I am quite waiting. आपको तो पता ही है कि मैं जब सिनेमा की बात आती है और जब हिंदी सिनेमा की बात आती है तो मैं तो बड़ी होपफुल हूँ जी। मुझे लगता है कि कभी ना कहीं बीच ना बीच में ऐसी मूवी आएगी कि जो कमाल ही कर जाएगी। And we really don't know which movie, है ना? अभी ऐसा चल रहा है यहाँ पे मार्केट में मामला कि अचानक से बीच में धुरंधर आई एंड वो लेकर सबको लूट ले गए, सबको लूट के ले चली गई। बट या वेल, चलो, क्या दादा सबको लूट कर लेकर जाएंगे? क्या दादा ने जिस तरह की इनिंग्स और पारियां अपने टाइम पर खेली है, क्या उनकी मूवी यानी कि उनकी बायोपिक भी वो पारी खेल पाएगी? जानेंगे जब मूवी रिलीज होगी। अभी गाने सुनेंगे और ऐश करेंगे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, दिस इज मिडवीक ब्लूज। सपना जी, वेलकम एंड गुड इवनिंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 529 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ। यहाँ पर और चल रहा है क्या मिड वीक ब्लूज और टाइम क्या हो रहा है ट्रैफिक अपडेट का। हेवी ट्रैफिक उस वक्त आपको मिलेगा इन केपीई टनल टुवर्ड्स टीपीई बिटवीन पीआईई एंड ईसीपी। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन अपर क्रॉस स्ट्रीट टुवर्ड्स न्यू ब्रिज रोड आफ्टर साउथ ब्रिज रोड, अवॉइड करे लेन बिफोर। और मिलेगा हेवी ट्रैफिक ऑन बीकेई टुवर्ड्स वुडलैंड्स एट एसएलई एग्जिट। ये दस घंटे का ट्रैफिक अब चलते हैं, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रिवर्स गियर मारते हैं। एंड फॉर सम रीजन आई हैव बीन हमिंग फ्यू रेट्रो ट्यून्स दिस मॉर्निंग, ओके, एंड दिस इज अ वन ऑफ देम। और इतना एनर्जी भरा हुआ है ये रफी साहब की आवाज साथ में आशा ताई का एकदम मजेदार। चलो लेट्स गो फॉर इट टुगेदर टुगेदर एकदम वेंसडे स्टाइल में और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh
3: mein raho. They were not chosen. They were created.
4: Uski maa ka naam Janki tha. Hum ise Sita bulaenge.
5: Alpha.
6: The newest chapter in the YRF spy universe.
7: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
6: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
8: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
6: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।
9: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
1: That's right, Alpha. वो अल्फा वुमन कौन है जिसको आप जानते हो और जिसकी कहानी आपको लगता है कि इट इज सो वेरी अमेजिंग एंड सो वेरी इंस्पिरेशनल एट द सेम टाइम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ चल रहे मिडवीक ब्लूज। मैं दे रही हूँ मौका आप क्या कि आप जाके अल्फा मूवी देखो और एक टिकट का खर्चा हम आपका दे दे, है ना। ये सारी चीजें करने में तो हम वैसे भी सबसे आगे रहते हैं, बट वी रियली रियली वॉन्ट टू नो अबाउट दैट अल्फा वुमन। सी अल्फा मूवी में भी हमारी दोनों यानी कि आलिया भट्ट एंड शर्वरी दे वर लीडिंग द स्टोरी फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश एंड दे वर लाइक कि भाई उनको दे आर बिल्ट लाइक दैट, दे आर द अल्फा। यू नो जब भी अभी दो कुछ टाइम से ये अल्फा वुमन की बात हो रही है, सो कितनी बार कितनी कहानियां आपके जहन में जो आती है। आई रिमेम्बर दिस आंटी ऑफ माइन एंड ये हमारे पिछले इससे पहले लाइक काफी पुरानी ये बात है एंड कानपुर जैसे शहर में एंड इट्स यू नो बिग थिंग जब आप एक सर्टन एज पे आते हो एंड शी वाज क्वाइट एजेड। ओके एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि वो क्लास टेंथ का एग्जाम जो है वो वापस से देंगे बिकॉज फॉर ड्यू टू ऑफ कोर्स फैमिली जल्दी शादी हो गई एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करते करते सब कुछ वक्त काफी निकल गया, बट उनको पढ़ने का काफी शौक था। तो सडनली वन डे ऑफ कोर्स शी डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट द सोसाइटी जिस माहौल में हम लोग जिस मोहल्ले में रह रहे हैं काफी उनके बारे में उस टाइम पे बातें हुई। अरे अरे पता है बेटा भी जा रहा है वो भी जा रही है दोनों साथ में टेंथ का एग्जाम, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है, यू नो हाउ इट इज राइट। स्मॉल टाउन्स में लोग इस तरह से ही सोचते हैं वहां पर। तो बट आंटी ने किया एंड आंटी ने उसके बाद ग्रेजुएशन भी किया एंड उसके लाइक उन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई पूरी की एंड देन शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस। हालांकि वो घर का ही लाइक घर से ही उन्होंने शुरू किया, बट देन दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ब्रिलियंट एट द सेम टाइम। Today I think of her story and I'm like, she is the alpha woman. Yes, she is the alpha woman. If you have a story around you, if you have seen someone doing something like this or anything, जहाँ पे आपको लगा हो कि oh my god, यही है वो alpha woman जिसकी शायद अंतरा बात कर रही थी और पूछ रही थी कि भाई, if you know, then yes, tell us about her and why are you nominating her as अल्फा वुमन, वो भी बताकर हमें भेज दीजिए। क्योंकि क्या है ना, उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि आप अल्फा मूवी इस हफ्ते हफ्ते यानी कि 12 जुलाई से पहले पहले देख कर आओ और आपका टिकट जो है हम करेंगे रीइंबर्स। बट यू विल हैव टू डू ऑल ऑफ दिस। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत तो मतलब कुछ कदम हम चले कुछ कदम आप चलो, आप फ्री में देख के आओ मूवी और हम कहें वेरी गुड, दिस इज द वे टू डू इट एंड दिस इज द वे टू गो। सो यस, यू थिंक अबाउट योर अल्फा वुमन एंड सेंड अस 9151896 पर या फिर हमारा जो सोशल मीडिया का पोस्ट है वहां पर भी कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल उनको टैग कर सकते हो और हमें बता सकते हो। साथ साथ मैं है ना एकदम गहराई में जाकर इस गाने के साथ

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: नसीब का तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त आपको मैं जरूर मिल गई हूँ. और क्या ही मतलब, खुल ही गया आपका नसीब. गुड इवनिंग, नमस्ते. रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर 6 बजे के उस पार बिल्कुल पहुंच चुके हैं. यहाँ चल रहा है मिडवीक ब्लूज. जी हाँ, हम 5 बजे से आपके साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन इस वक्त क्या है कि अगर जस्टिन के साथ ने अभी ट्यून इन किया है तो वेलकम है जी. सो वेल फॉर ऑल द ड्राइवर्स हु आर स्टिल ड्राइविंग, जरा आप कान खोल करिए, हमारी अगली खबर सुने. यू नो व्हाट हैज बिकम ऑलमोस्ट अ रिफ्लेक्स दीज डेज, कम टू थिंक अबाउट इट. फोन वाइब्रेट करता है एंड बिफोर वी इवन रियलाइज इट, हमारा हाथ जो है ऑटोमेटिकली फोन की तरफ बढ़ जाता है. सो वेल ड्राइविंग इन सिंगापुर, अब आपको शायद इन फ्यूचर इस बारे में 2 नहीं 3 नहीं 4 बार सोचना पड़े. सो अ न्यू प्रपोज चेंज टू द रोड ट्रैफिक एक्ट, जो कि ऐसे अभी प्रपोज किया गया है, एकदम कल ही कल अनाउंस हुआ है, दैट सिंपली होल्डिंग योर फोन व्हाइल योर व्हीकल इज मूविंग could be an offense. बस आपने पकड़ रखा है अपने हाथ में, उतना भी offense हो जाएगा अगर तो ये बिल पास हो गया. Even if you are not texting या फिर scroll कर रहे हो या फिर even if you are not making a call, it's just in your hand, just like that. So if passed, authorities would not need to prove that you were actually using the phone. Just holding it while driving may be enough. 12 demerit points तो है ही है इसके पेनल्टी के हिसाब से, but first time offenders could also face a fine of up to $1,000, even 6 months of jail. Mounted phones used hands-free are still allowed. है ना? तो वैसे मैं वो उतना डिफरेंस भी बता देती हूँ. करंट रूल्स अंडर रोड्स ट्रैफिक एक्ट जो है सिंगापुर में, वो ये कहता है, इट इज एन ऑफेंस इफ अ ड्राइवर होल्ड्स एंड ऑपरेट्स अ मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस व्हाइल ड्राइविंग. प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट वाला है एक्ट, वो ये कहता है, इट विल बी एन ऑफेंस एज लॉन्ग एज द ड्राइवर होल्ड्स अ मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस इन देयर हैंड व्हाइल ड्राइविंग. सो वेल ऐसा अब देख लो आपने क्या करना है. आई एम श्योर दैट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हु डू दैट. When you are riding a cab, if your cab driver is doing such things, jiski wajah se I think that is one of the main reasons why this is kind of being proposed and to reduce the number of accidents. Because kya hai bhai, distraction leke hame kya karna hai, jaan hai to jahan hai, always we say that and we always usi baat ke saath hum aage badhte hue jaate hain. Haan ji, haan ji, for all the people jinko lagta hai ki yahi wo waqt hai jab hame phone haath mein pakadna chahiye, nahi gaadi wo waqt hai. Maybe not that. Yeah, very soon it is going to change. That's what it is all about. Abhi to propose hi hua hai, pass hone pe wo bhi hum bata denge. Bas fir to tenu sut sut kar da, hai na? Ye gana agla yahi dikh raha tha, maine kaha bol deti hu, koi connection nahi hai. Radio Masti 24/7 live. Good evening.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: क्रिशिवल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
0: क्या आपको मेरी आवाज अच्छी लगती है? क्या आपको मेरा अंदाज पसंद आता है? आपको ओके? मतलब ये क्या सवाल हुआ? मतलब 6:19 पे ऐसे सवाल कौन पूछता है? मैं पूछती हूँ रेडियो 24/7 लाइव पर। मिडवीक ब्लूज चल रहा है यहाँ पर, मैं हूँ अंतराब के साथ। यहाँ पर गुड इवनिंग, नमस्ते, दैट इज राइट। पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि कई बार होते हैं लोग पूछते हैं कि कैसे कर लेती हो भाई। अब तो शान से कह सकती हूँ कि बहुत सालों की जो है प्रैक्टिस हो गई है, अपने अपने आप से जो है आवाज और सब कुछ हो जाता है। बट हैव यू एवर कॉट योरसेल्फ डूइंग दिस राइट? यू नो आई नो अ लॉट ऑफ लिसनर्स, ओके, आप में से कई सारे लोग हैं, जब आप बात करते हो ना तो योर विटी रिप्लाइज एंड एवरीथिंग, आई काइंड ऑफ कैच इट एंड आई नो दैट यू हैव गॉट इट इन यू। इट्स जस्ट दैट यू नीड परफेक्ट लाइक काइंड ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन एंड यू विल बी जस्ट राइट देयर। भाई आजकल अगर इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया भी देख ले, ठीक है, आप अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम रील जो है वो रिकॉर्ड करते हो एंड यू हैव टेकन लाइक 30-40 टेक्स एंड आपको लग रहा है यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, so maybe problem voice nahi hai, maybe nobody ever taught you how to use it, and that's exactly why am I talking about RJ Academy by Masti Media Network Singapore। bhai of course wapas se admissions open ho chuke hain yahan par। agar aapka bhi kuch aisa dream hai ki bhai aapko radio jockey ke jaise banna hai, podcast host banna hai, voice over artist banna hai, you know content creator banna hai, even if you are planning to start your influencer journey, this course is basically designed to help you speak कॉन्फिडेंस के साथ, यू कैन कनेक्ट विद पीपल एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ मोर नेचुरली। और सबसे अच्छी बात है कि दैट इसका ना हाइब्रिड एक लर्निंग मॉडल है विच काइंड ऑफ सूट्स एवरीबडी आज की डेट में। मतलब 12 घंटे पर लेवल, ठीक है, एंड इट्स स्प्रेड अक्रॉस द ऑनलाइन लर्निंग प्लस इन स्टूडियो के प्रैक्टिकल सेशन, सो यू गेट दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर अलॉन्ग विद रियल स्टूडियो का जो है फील एंड एवरीथिंग। तीन लेवल्स है, बिगनर लेवल है इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट है टू शार्पन योर प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी टेलिंग, देन एडवांस लेवल है जहां पे यू विल बी एक्सपीरियंसिंग लाइव होस्टिंग के सिमुलेशंस एंड स्टूडियो के सिस्टम्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग, इंटरव्यूज एंड ये सारी चीजें थोड़ा सा। एंड सिर्फ थ्योरी वाला कोर्स नहीं है, मतलब नहीं, यू विल एक्चुअली गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स एंड फीडबैक ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास से, यू नो द प्रोफेशनल्स राइट, you trust them yaar completely, and then of course selected participants agar ye sari cheezon se paar karke bilkul aage badh jate hain, they also stand a chance to host live on Radio Vasti 24/7 live। so academy is open for everyone aged 14 years and above, so agar aap student ho, working professional ho, homemaker ho, ya for simply someone who's always wanted to find their voice, ये वो जर्नी आपकी बिल्कुल शुरू हो सकती है यहाँ पे। सो जस्ट डोंट कीप सेइंग कि एक दिन ऐसा मौका मिलेगा तो करेंगे, ये मौका है अभी कर लो। जस्ट सेंड योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू info@radiomasti.com.sg, रिक्वेस्ट करो एप्लीकेशन फॉर्म एंड लेट योर वॉइस टेल योर स्टोरी। आरजे एकेडमी बाय मस्ती मीडिया नेटवर्क, आपकी वॉइस, आपका स्टेज एंड आपका फ्यूचर शुरू होता है अब, राइट नाउ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: Now this was another song this morning which I was humming and yeah, one of the retro. आज सुबह कुछ ऐसा retro का माहौल बना और एक के बाद एक कुछ ऐसे गाने में सुनते गई and I have been humming since then. But it's nice, it's quite nice. ये गाना तो बहुत ही शानदार था. अगले घंटे एक और गाना मैं play करूँगी. In fact वो मुग्धा ने जो है अपने show पे किया था and I was like यार मजे ही आ गए. आज क्या हो रहा है? होता है ना कोई कोई दिन there is a flow of songs and it just kind of stays with you. Well, फिलहाल stay with me because I'm going to give you the traffic. अपडेट 6:34 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन टीपीई टुवर्ड्स पीआईई आफ्टर पासेस ड्राइव 8. हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन सीटीई टुवर्ड्स एवाईई एट पीआईई चांगी एग्जिट और मिलेगा हेवी ट्रैफिक ऑन बीकेई टुवर्ड्स वुडलैंड्स बिटवीन वुडलैंड्स रोड एंड वुडलैंड्स एवेन्यू 3. सो ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट. फिर खुदा जाने गाने आ रहे हैं. द ब्यूटिफुल नंबर शिल्पा राव एंड केके की आवाज टू गुड. लेट्स लिसन टू इट टुगेदर.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

से इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब इसके हिसाब से टॉप एट के हिसाब से कौन उठाएगा? एंड गोल्डन बूट मेसी राइट राइट हु एल्स इज देयर? मैसेज करिए 9158 963 पर एंड या लेट्स टॉक फुटबॉल, व्हाई नॉट है ना.

0: They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
5: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change karein.
0: So tell me, who is the alpha woman you know? That's right. That's what we are asking everyone. Radio Masti 24/7 live. Antrap ke saath Midweek Blues. May yes, Alpha has been released. All thanks to Home Screen Entertainment. Pichle Friday se already lag chuki hai. Aur hum aapko ye keh rahe hai ki sabse pehle to apne aas pas dekhiye. And I'm sure 120, 150, 200% sure that when you will look around, you know that you look at that woman and you say that, oh my God, That's an alpha woman. Okay, so just nominate or tag that woman and हमें बताइए उस क्योंकि क्यों आप कह रहे हो कि वो alpha woman है. So once you send that and go and watch within this week, which means by 12th of July, अगर आप जाके alpha देख कर आते हो तो एक ticket हमारी तरफ से मुफ्त यानी कि we will reimburse one of your tickets. So yes, अब वो कराना है तो ये इतना सा जो है एक recognition जो है और एक acknowledgement for that alpha woman. I don't think so. We are asking for anything seriously skyrocket high, right? So think about it. Even if you don't want anything else, just think about the moments and think about ki jab aap inki baat karoge to aapko us baat ko kehne mein kitni khushi hogi aur aapne unke bare mein aisa socha unko kitni khushi hogi. Aur usi ke sath sath, of course, the alpha movie definitely aapko jaake dekhni hi chahiye. Upar se जब हम टिकट के पैसे दे रहे हो तब तो डेफिनेटली जाके देखनी चाहिए. इससे बेहतर आइडिया हो ही नहीं सकता है. सो ईदर यू कैन सेंड अस योर आंसर्स टू और मेंशन दैट अल्फा वुमन अबाउट एंड व्हाई आर यू काइंड ऑफ नॉमिनेटिंग देम एज द अल्फा वुमन. तो वो आप 9151 8963 पर भेज सकते हैं या फिर हमारा जो सोशल मीडिया पोस्ट है वहां पर भी आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए जो है लेट मी प्ले व्हाट पीपल कॉल मी ड्रामा क्वीन. वो तो मैं हूं ही. क्या करें, ऐसा करना पड़ता है. लाइन ही कुछ ऐसी है. आई टेल यू इट कम्स नेचुरल.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: Ghagra is coming via Agra, but you are coming from where? That you need to tell me. How can I tell? I can tell where I am, right? 7 baje ke us paar pahunch chuke hain. Midweek blues chal raha hai on Radio Masti 24/7 live. Antara aapke saath mein hai. Aao thoda sa tech update dete hain aapko. To well, agar aapko nahi pata hai, to Instagram jo hai Meta basically. Meta ne launch kiya hai ek AI image ka model which is called Muse Image. Theek hai? Aur ye taaza kali ke date mein launch hua hai. So basically kya hai ki agar जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड इट्स अ पब्लिक अकाउंट, ओके, कोई भी आपको @ करके जैसे मेंशन करता है, मेंशन करके यू नो एक एआई प्रॉम्प्ट दे के, एंड मेटा कैन दे हैव दिस ऑप्शन दैट दे कैन पुल अप योर फोटोज टू जनरेट न्यू इमेजेस ऑफ योर फेस. आपने पता भी नहीं होगा बट आपने कंसेंट दिया भी होगा. हाउ? विदाउट नोटिफाइंग यू दे कैन डू दैट एंड विदाउट एनी वे फॉर यू टू नो इट हैपेंड. भाई क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम में जाते हो आपने कितने सारी चीजें जो तो बिल्कुल भी नहीं देखी होंगी, इंक्लूडिंग मी, आई ऑल्सो हैव नॉट डिस्कवर्ड. एंड मेरे को भी ऐसे ही जब मैं बात करती हूँ आपके साथ साथ, एंड देन यू हैव टू डिसेबल अ फ्यू थिंग्स क्योंकि या आई कैन जस्ट क्विकली टेल यू हाउ टू काइंड ऑफ टर्न इट ऑफ वेदर एंड दैट इज ऑल्सो ऑन. आप करना चाहते हो उसको टर्न ऑफ तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो वो भी आपकी चॉइस है. तो बेसिकली जब इंस्टाग्राम में आप अपने प्रोफाइल पे जाते हो एंड देन यू टैप ऑन दोस तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आती है ना, जो मेन्यू आइकन होता है विच इज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, राइट, तो आप वहां पर जाते हो तो आपका सेटिंग्स का पूरा वो सब खुल जाता है. देन यू स्क्रॉल डाउन और नीचे आपको एक ऑप्शन आता है शेयरिंग एंड रीयूज सेक्शन. सो अंडर दैट अलाउ पीपल टू यूज योर कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड विद AI features on Meta. This is one whole thing. इसमें जो toggle है, यानी कि वो जो एक button है ना, इससे on off होता है उसके बाजू में, या उसको just off कर देना है. Posts and reels मतलब basically private account में तो already automatically block हो जाते हैं, but usually ये by default on होता है. So अगर आप चाहते हो कि इस तरह की चीजें ना हो तो देन यू कैन जस्ट काइंड ऑफ गो देयर एंड मेक श्योर दैट इट इज स्विच्ड ऑफ, व्हिच आई डिड. लाइक जब मुझे ये पता चला सबसे पहले तो मैंने जाके यही किया बिकॉज अपेरेंटली मेरा भी ऑन था एंड आई वाज लाइक ओके ऑलराइट. एक्सप्लोर करने के लिए आई थिंक बहुत सारा कुछ है जो अभी भी बाकी है, पर आई थॉट अगर मुझे पता चला है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी इस बात से अवगत कराऊं. आओ जी आओ योगेश जी आओ. आई थिंक योगेश जो है वो इस वक्त वापस जा रहे हैं अपनी गड्डी लेकर. तो हमारे दिल पे गिटार बजी तो हमने सोचा कि गाने के बहाने इनको सुना दिया जाए. क्या कहते हो आप सभी के लिए? Coming up next is this Gaana.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
1: जीजी।
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
1: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
5: 7:00 हो चुके हैं, 17 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ, एंड हंगामा हो गया। किसकी लाइफ में हंगामा हो गया? नहीं, जहां पे कंगना रनौत हो वहां पे हंगामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे कि क्या कर दिया, क्या ही कर दिया अब उस लड़की ने। सो वेल, अब बस कुछ ही दिन थे कि जब कंगना रनौत ने अनाउंस किया था कि हमारी जो क्वीन 2 मूवी, लाइक क्वीन का फर्स्ट पार्ट, एपिक, ओके, क्वीन 2 की जो है फिल्मिंग रैप कर चुकी है, एंड हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट हैज हिट अ मैसिव लीगल हर्डल। सो फैंटम स्टूडियोज, जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस बिहाइंड द 2014 नेशनल अवार्ड विनिंग हिट क्वीन, हैज ऑफिशियली फाइल्ड 250 करोड़ का लॉसूट अगेंस्ट जियो स्टार इन बॉम्बे हाई कोर्ट। फैंटम स्टूडियोज जो है वो क्लेम कर रहा है दैट अंडर देयर ओरिजिनल 2014 का अग्रीमेंट, बोथ पार्टीज होल्ड एन इक्वल 50% को ओनरशिप ओवर एनी फ्यूचर सीक्वल्स या प्रीक्वल्स या फिर डेरिवेटिव वर्क्स। नाउ वो ये कह रहे हैं कि दैट जियो स्टार मूव फॉरवर्ड विद दिस न्यू प्रोडक्शन एंटायरली विदाउट देयर नॉलेज या कंसेंट, डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग लेटर्स विच वर सेंट टू देम सिंस मे ऑफ लास्ट ईयर थ्रू द लीगल फर्म। जो है फैंटम प्रोडक्शन हाउस जो है इज नाउ सीकिंग अ स्ट्रिक्ट कोर्ट का इंजंक्शन टू ब्लॉक फिल्म का रिलीज अलॉन्गसाइड द हैवी फाइनेंशियल डैमेजेस, वो तो है ही है। इन रिस्पॉन्स टू दिस जियो स्टार जो है अग्रेसिवली दे आर फाइटिंग बैक। स्टूडियो रिलीज एक फॉर्मल स्टेटमेंट क्लैरिफाइंग दैट द अपकमिंग कंगना रनौत स्टारर इज अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन फीचरिंग एन एंटायरली ओरिजिनल स्टोरी, मेंटेनिंग दैट द न्यू मूवी जो हैज एब्सोल्यूटली नो नैरेटिव या कैरेक्टर और क्रिएटिव कनेक्शन टू द 2014 फिल्म। एड्रेसिंग द टाइटल का डिस्प्यूट डायरेक्टली, उन्होंने ये भी एक कहा दैट द वर्ड क्वीन is a common English noun and no single party can claim exclusive ownership or copyright over it. My lord, क्या चल रहा है my lord? भाई मेरे को अचानक से बताते बताते ही लग गया कि मैं ही दलीलें दे रही हूँ और मैं ही बता रही हूँ और दोनों तरफ से मैं लड़ रही हूँ, but well, nothing has come easy to Kangana Ranaut anyways. Right, but I really hope that Queen 2 जो है passes through फटाफट से, and epic एक और जैसे Queen ही epic, उससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी epic Queen 2 हो, and I know that she's capable of doing or making and presenting that kind of a movies. Just waiting for it. Well, इसी के साथ, yeah, the third gana of this hour. Because since morning मैंने कहा ना, आज सुबह मैंने मुग्धा के शो पे ये गाना सुना, and I was like, यार शाम को अपन भी ये चलाएंगे। It's a nice retro one and I'm sure that you will also enjoy it on Radio Masti 24/7 Live. Good evening.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: सो ग्लैड दैट आप लोग को गाने बड़े पसंद आ रहे हैं। होता है ना कभी कभी हम सभी का मूड बड़ा सिंक में आने लगता है एंड वी ऑल आर लाइक ओ गॉड आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ मूड आई नीडेड फॉर टुडे एंड यू आर राइट। हम लोग ना वेंसडे को काइंड ऑफ थर्सडे मोड पर, इनफैक्ट वीकेंड मोड पर आना बिल्कुल एक होता है ना वार्म अप सा शुरू हो जाता है कि ठीक है यार कोई नहीं, बीचों बीच पहुंच गए हफ्ते के, एकदम कोजी सा हो रखा है, कोई नहीं पहुंच जाएगा वीकेंड तक, सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड फॉर अ वेरी गुड रीजन वी ऑलवेज थिंक वीकेंड में सब अच्छा ही हो जाएगा वो अलग बात है, रियालिटी कभी कभी बहुत डिफरेंट होती है। 7:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, बाकी बातों को साइड में करते हुए ट्रैफिक का अपडेट देते हुए अभी के अभी हैवी ट्रैफिक इस वक्त आपको मिलेगा ऑन PIE towards Changi between Pailabar Road and Stevens Road. Heavy traffic ki khabar on PIE towards Itwas between BKE and Thompson Road. Aur milega vehicle breakdown on Stamford Road towards Victoria Street after North Bridge Road. A white crate lane number 3. So well, filhal hamari ye jo lane hai seedha Brahmastra par jaakar lagi hai. Yani ki beautiful awaaz of Arijit Singh coming up next with Kesariya on the airwaves of Radio Masti 24/7 Live.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: Welcome back, Radio Musti 24/7 live on Trap के साथ और यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. और थोड़ी देर पहले जो इंस्टाग्राम की खबर मैंने आपको दी थी अबाउट द म्यूजिक, इट्स एवरीवेयर, लाइक एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट. यू बेटर गो एंड चेक योर इंस्टाग्राम सेटिंग्स बिकॉज या आई थिंक अगर आपका पब्लिक अकाउंट है इट्स वर्थ चेकिंग वंस वेदर वो जो टॉगल जिसके बारे में मैंने बात की थी दैट ऑप्शन इज चेक्ड और अनचेक्ड. जस्ट बी श्योर दैट वॉट यू वॉन्ट इज has happened that way. But well, coming back to bhai, I'm going nuts with this. I need some nuts isi chakkar mein, but I have some nuts right here available with me in the studio as well. Bahar mera jo ek desk hai pyara sa, so wahan par rakha hua hai. Waise bhi jo hai healthy snacking ke liye kehte hai ki beech mein kabhi aisa munch karne ko man kare to go for look for those healthy stuff. To maine apne studio ka jo bahar mera desk hai to wahan par rakh diya hai ki hota hi hai यार अचानक से एक दिन में इंसान थोड़ी ना बदल जाएगा. वो तो भूख तो लगती ही है मुझे, तो फिर मैं जाती हूँ और वो कृषि बल के नट्स जो मैंने मंगा के रखे हैं वो मैं बहुत ही अच्छे से उसको एंजॉय करती हूँ. द पंपकिन सीड्स एंड द मैकेडेमिया नट्स बिकॉज ए it's organic, okay. B, it's really nice, okay. The quality wise and everything, because आजकल क्या है ना कि हम लोग वापस से हर चीज की चीजें जो है पीछे कितना इसमें कितना है, प्रोटीन कितना है, ये कितना, ये सारी चीजें हम ध्यान देने लगे हैं. ये वो सारी चीजें हैं जो हम एक टाइम पे बाथरूम में बैठकर जब हमारे पास कुछ नहीं, फोन नहीं था उस टाइम पे, हम लोग ऐसे सब उठाते थे बाथरूम का सामान और पीछे देखते थे ओ ये क्या है. But now we see it because we understand a little bit of it, and which is a good thing. So well, if you are also, you want to go nuts with the nuts, yes, Krishi Walke nuts, you should go nuts for, definitely, they are worth going nuts for. So ggbaronline.com pe jai aur Krishi Walke nuts jo hai wo bilkul jacket, just type Krishi Walke and they'll give you all the kind of nuts they have and try them once, matlab ek bar try to karke dekho, phir kahoge ki now we know why you went nuts on Krishi Walke nuts, kyunki ggbaronline.com make me so. They just give amazing ones. क्या करें.

0: They were created.
1: इसकी माँ का नाम जान की था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
5: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज.
6: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
7: ये मिलता है. यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़.
8: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
9: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप.
10: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Now, mood change kare.
11: 7:46 हो चुके हैं. स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ, और यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. भाई ब्लूज तो सारे के सारे मम्मियों की जिंदगी में रहते हैं. जब उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है कि बच्चे तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, इनको कितना पढ़ाना पड़ता है. ओ माई गॉड, अभी मुझसे कोई यहाँ पर जो है चैट में चटिया रहे थे हम लोग, तो मुझे बताया गया कि भाई बड़े हम होमवर्क करा रहे हैं, बहुत ही मेहनत लग जाती है यार, इतनी करने के बाद थोड़े बहुत नंबर आ जाते हैं. एंड आई जस्ट काइंड ऑफ गो बैक. मैंने कहा ये एक जो चीज है जो सदियों से चलती हुई जा रही है रीति रिवाज के जैसे. मेरी मम्मी भी इसी बात से परेशान रहती थी कि मतलब कितना भी कर लो नंबर तो इतने से ही आते हैं और पीछे पड़े सभी सारी मम्मियां पीछे पड़ी रहती है राइट, कि बेटा पढ़ लो नंबर आ जाएंगे, नंबर खराब हो जाएंगे. एवरीथिंग इज अबाउट वॉज अबाउट एंड ऑलवेज अबाउट द नंबर्स. क्या ही बताए. और हमारा हाल कुछ ऐसा था कि ठीक है ललिता तुम बच्चों के कान बंद कर दो पहले तो. तो हमारा हाल कुछ ऐसा था कि हम जब हमें कभी कभी ऐसा होता था ना कि यूनिट टेस्ट के पेपर हमारे जो है घर वापस भेजा करते थे. अभी आजकल तो सारे अपेरेंटली पेपर्स वगैरह जो है आपको उसमें मिल जाया करते हैं ईमेल वगैरह में, बट हमारे ना वो ऐसे फिजिकल पेपर्स मार्क होके भेजा जाता था. बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे, तो हम क्या सोचते थे कि कितने मार्क्स पे कितनी कुटाई होगी. हमारा मेजरमेंट हमारे तुरंत दिमाग उस नंबर कैलकुलेशन में चला जाता था कि फिजिक्स हम लगाएंगे कि कितनी जोर का झापड़ पड़ेगा इतने नंबर पे. आप देख रहे हो यहाँ पे वरी पॉइंट ही अलग है, ठीक है कि नंबर आए नहीं आए बट झापड़ पड़ना तो पड़ना ही है, बट कितनी इंटेंसिटी का पड़ेगा वो हम मार्क कर लेंगे. आई नो आई टोटली गेट इनटू इट्स वेंसडे इवनिंग, द शो इज अबाउट टू गेट ओवर इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल. And I already am into the 90s.

0: मूड, दैट इज राइट, क्योंकि कल मेरा वो वाला शो है जो हम सभी को काफी ज्यादा पसंद है. सो उन्हीं यादों को ताजा यहाँ पे करते हुए आप बताओ, आप जब आप यू नो बड़े हो रहे थे, आपके घर में नहीं था कि नंबर नहीं आएंगे बेटा, मेहनत करो, पढ़ते रहो, नंबर नहीं आएंगे. ये चीज लाइक दिस इज वन थिंग आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव हर्ड इन आवर हाउसेस. एवरी सिंगल टाइम वी हैव ट्राइड टू स्टेप आउट कि मैं थोड़ा एक घंटा मम्मी बाहर खेला हूं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या, हर समय खेलना खेलना, बाहर ही रह जाओ, या ऐसी चीजें हमने सुनी हुई है. बट आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स नाउ, यू टेल मी. बच्चे उल्टा आपको बुली करते हैं कि आप चला रहे हो अपनी डोमिनेशन अच्छे से. बट एनीवेज, व्हाटएवर द थिंग इज, आई थिंक द मदर्स लाइक द पेरेंट्स नो द बेस्ट. सो यस, कूडोस टू यू, बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हो आप सभी. तो उस बात पर तो मैं शेयर कर ही रही हूँ, बट द किड्स ऑल द बेस्ट ब्रो.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: Calming the overworked mommy, जिन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ. यहाँ पर अब जाने का वक्त हो रहा है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, बट थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम लोग ऐसे सोचते थे कि इस नंबर पे कितना चाटा पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स. कीपिंग ऑल दैट असाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू कि भाई एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी नो इट how much it is important, right? That is why we did sari cheeze complete karke aaj jahan hu. I think education has a very very big contribution to that. So us dar tak aane ke liye ye sari cheezon ki zarurat padti hai. Aap karna hai to karna hai, right? Well, isi baat ke sath chalo bhai nikalte hain. Kal aapse hogi mulaqat. Hum to chale gym is time pe bas khatam karke aur kal 90s ke show mein aa jana time se, hai na? चलो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड. एक 90s ही गाना लगा के जाए, चलो फिर लगा दिया जाए.
3: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता. गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
4: बिल्कुल आती है, सुनाओ.
3: सुना.
4: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे. आदाब.

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है. मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं. और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज. एंड दिस इज द साउंड ऑफ आवर नेशन. This is what makes me love my zindagi. So on that note, ladies and gentlemen.

0: कभी कभी कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए,
1: ये झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल कि जैसे

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सब तो हम सब ने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा ही है, लेकिन हिस्ट्री का आखिरी लेटर होता है वाई, और वाई से होता है यस्टरडे, जो हर आज का ही एक हिस्सा है, न कि किसी किताब का एक चैप्टर। हर एक गुजरता लम्हा कल की झोली में गिर जाता है, लेकिन वो आने वाले कल को भी मुतासिर करता है। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं यार, हाँ? आजकल, लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कल, आज और कल, ये आपस में जुड़े हुए हैं। मैं आपको बीते हुए कल में ले जाऊंगा, जहां से आपको आज का पता मिलेगा। हाँ जी, मैं हूं आपके साथ समर, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेजेंड्स की एकदम नई सीरीज में, अचीवर सीरीज में, जहां मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे कुछ लोगों से जिन्होंने कल कुछ ऐसे काम किए कि आज हम मजबूत हैं। आज की जिस इमारत पर हम खड़े हैं, उनकी नींव उन्हीं लोगों ने रखी थी। उन्होंने अपनी कठिनाइयों से जूझ कर हमारे लिए आसान राहें खोजी। उन्होंने सपने देखे, मगर हमारे लिए, भारत के लिए। ऐसी शख्सियतों को हम करीब से जानेंगे जो आज हमसे दूर चले गए हैं, पर उनके कदमों के निशान आज तक हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेजेंड्स, और आज मैं आपको ले चलूंगा उस भारत में जो सोने की चिड़िया था, लेकिन जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने बुरी तरह से तबाह कर रखा था। भारत का अपना कुछ था ही नहीं। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब इकोनॉमी को संभालने का बीड़ा उठाए हुए थे। तब आए कुछ ऐसे हीरोज आगे जिन्होंने इस डूबती उबरती इकोनॉमी के शिप को संभाल लिया। आज हर कोई उनका नाम जानता है, पर वो काम जो उन्होंने किया वो कितना बड़ा था, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपके लिए एक ऐसे नाम को मैं लेकर आया हूं, और ये हैं धीरू भाई अंबानी। कहानी शुरू से शुरू करने के लिए एक ब्रेक तो चाहिए ना, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आइएगा। बातें बहुत सारी हैं।

जो हम है वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। मुझे धन को धन का हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हम

0: रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 लाइव है। ये सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 और मैं हूँ समर आपके साथ। लेजेंड्स की बात हो रही आज और लेजेंड्स की इस अचीवर्स सीरीज में हम आपके लिए ले आए हैं कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे पर्संस को, उनके किस्सों को, उनकी कहानियों को, जो न सिर्फ मॉडर्न इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के नींव के पत्थर बने, और न सिर्फ नींव के पत्थर बने बल्कि मील का पत्थर भी बने, माइलस्टोन्स। भारत में जब 50 सबसे बड़ी शख्सियतों को लिस्ट किया गया तो उन पर एक किताब लिखी गई और ये किताब शुरू हुई गौतम बुद्ध से और खत्म हुई धीरू भाई अंबानी पर, जिन्होंने इंडिया में इंडिया के चेंज मेकर का रोल अदा किया। आज हम उन्हीं धीरू भाई अंबानी की बात करने वाले हैं, एकमात्र बिजनेसमैन जिन्हें इतना बड़ा कद हासिल हुआ। धीरू भाई अंबानी जब पैदा हुए तो वे संसार सागर में बिल्कुल एक मामूली मछली की तरह ही थे। संसार का समंदर बहुत बड़ा था, ह्यूज, लेकिन उनके फिन्स में गजब का हौसला था। धीमे धीमे तैरते तैरते उन्होंने जो स्पीड पकड़ी, ऐसी स्पीड पकड़ी कि फिर उनको कोई पकड़ ना पाया। वो आगे ही आगे बढ़ते चले गए, सबको पीछे छोड़ते हुए। ये सब हौसला सी तो होता है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी होता है आइडिया। उनके पास आइडियाज थे, नए और बेहतरीन। उनके पास उनके एग्जीक्यूट करने की बेहतर स्ट्रेटेजी और कनेक्शंस भी थे, जिसकी बदौलत वो रुके नहीं, आगे से आगे बढ़ते ही चले गए। सबका जिक्र करेंगे हम, लेकिन कहानी को

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment. आपकी नॉलेज आपकी जीत.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: आई एम अ बिगर शार्क, मैं नहीं हूँ बल्कि मैं आज जिनकी बात कर रहा हूँ वो अपने बारे में कहा करते थे यही। लेजेंड्स की इस घड़ी में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बुलंद हौसलों और ख्वाबों को पूरा कर दिखाने का मादा रखने वाले धीरू भाई अंबानी जी की। धीरू भाई जिन्होंने 1985 में शेयर होल्डर्स के साथ एक एनुअल मीटिंग रखी, तो उस वक्त मुंबई में कोई बड़ा मीटिंग हॉल नहीं हुआ करता था, इसलिए मीटिंग रखी गई फुटबॉल स्टेडियम में, जबकि कंपनी को अभी तक 2 decades भी नहीं हुए थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट था। इन 20 सालों में यानी 2 decades में उनकी कंपनी सरकार को सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू देने वाली कंपनी बन गई, जो कि गवर्नमेंट के पूरे टैक्स कलेक्शन का 5% था। और उस वक्त उनकी कंपनी देश की 3rd number की कंपनी थी। उनके ऊपर सिर्फ 2 कंपनी थी, टाटा स्टील और टाटा इंजीनियरिंग, और इन कंपनीज को कई साल हो गए थे, लेकिन लग रहा था कि रिलायंस टेक्सटाइल्स सबको जल्द ही पछाड़ने वाली है, और उसने पछाड़ा भी। लेकिन ये बात तब की है जब कंपनी को सिर्फ 20 साल ही हुए थे। इस कंपनी ने धीरू भाई के ख्वाबों में आना तभी शुरू कर दिया था जब उन्होंने कॉलेज के बाद अदनपोर्ट में एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की थी। एक फ्रेंच कंपनी थी जो शेल ऑयल बेचा करती थी। यहाँ इनकी काबिलियत को पहचान कर धीरे धीरे कंपनी ने इनको अपना रिटेल मार्केटिंग का इंचार्ज बना दिया। वो लंच आवर्स में बाहर जाते और बाजार की टोह लेते ताकि ये मालूम पड़े कि ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, कैसा बिजनेस इन दिनों चल रहा है। यहाँ से इनको कीनिया, युगांडा, एरिट्रिया, सोमालिया जाना होता था, और अब बाजार में इनकी पहचान बढ़ने लगी, बहुत सारे कॉन्टेक्ट बन गए। इसमें इनको बहुत मजा आने लगा और उन्हें लगा उन्हें बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मजेदार बात हुई। पूरा हफ्ता काम करने के बाद वो एडनपोर्ट में तैरा करते, जहाँ बेइंतहा शार्क हुआ करती थी। उनके साथ वाले स्विमर सोचा करते थे कि कमाल का बंदा है, किसी बड़ी शार्क की तरह समंदर में तैर रहा है। शिकार और शिकारी के बीच डिफरेंशिएट करते हुए ये जरूर एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ऐसा लोग उस वक्त ही कहने लग गए थे। फिर क्या हुआ बताएंगे कहानी में बहुत

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, आपका स्वागत। आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। आज मैं आपको सुना रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की कहानी। धीरू भाई अंबानी यानी धीरज लाल भाई अंबानी, जी उनका असली नाम यही है, पूरा नाम यही था। एक बहुत गरीब परिवार में वो जन्मे। तारीख थी 28 दिसंबर 1932, 28 दिसंबर 1932। इनके फादर एक स्कूल टीचर थे। पांच भाई बहनों के बीच जन्मे धीरू भाई अंबानी तीसरे नंबर के बच्चे थे। स्कूल में पढ़ते हुए ये लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ गए थे और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते थे, खास करके एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में। जब वो छोटे थे, मात्र 18 साल के, तभी वो एडन चले गए। अच्छा, मैंने बताया नहीं, उनके बड़े भाई वहां काम करते थे, तो वहां उन्होंने एक कंपनी में उन्हें क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एडन यानी एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग जगह के और अलग अलग कल्चर के थे, तो वहाँ उनका सबसे ज्यादा साथ दिया भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ने। इसे उन्होंने खुद के लिए मोटिवेशन के तौर पर काम में लिया और लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में इसका इस्तेमाल किया। इसके साथ ही एंशिएंट साधुस और राजाओं के बारे में पढ़कर उन्होंने जाना कि कितना डेलिकेट, सेंसिटिव और अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए। और बड़ा बनने के लिए कैश की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की जरूरत होती है। बस यही बात उन्होंने गांठ बांध ली और इंडिया आ गए। यहाँ उन्होंने अपना

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक लेजेंड्स में। आज हम जिस अचीवर की बात कर रहे हैं वो हैं धीरू भाई अंबानी, जिन्हें भारत के चेंज मेकर शख्सियतों में शुमार किया जा सकता है, जिन्होंने न सिर्फ भारत को एक बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी न भूलने वाली भूमिका निभाई। आज उन्हीं की कहानी मेरे यानी समर की जुबानी आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से धीरूभाई अंबानी ने मात्र 15,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया यही मैं आपको बताने वाला था। हाँ जी, तो धीरूभाई ने अदरक, इलायची, हल्दी यानी मसाले एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बाहर कॉन्टेक्ट्स तो थे ही, आपको जानकर अचरज होगा कि एक बार सऊदी अरेबिया के एक शेख ने इनसे वहां रोज गार्डन बनाने के लिए मिट्टी मांगी और धीरूभाई अंबानी तैयार हो गए, उन्होंने वो तक किया। ये तो होता ही है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको हर एक मौके को, हर एक अवसर को बनाना पड़ता है। और इसी तरह से उनके कनेक्शन बनते चले गए और अर्ली 60s में इन्होंने शुरू किया टेक्सटाइल और धागा बनाने का धंधा। और उन दिनों वो बॉम्बे के बिजनेसमैन के बीच पक्के बनिया के तौर पर जाने जाने लगे। मुंह में पान, घर जाने के बजाय दिन रात चाय पीना और वहीं कुछ खा पी लेना, कोई होश नहीं खुद का सिवाय जोश के कि कुछ करना है। परिवार को एक कमरे की चौल में रख रखा था। बस कुछ ही साल में यानी 1967 आते आते तो रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक बन गई, जिसका शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए था और 10 साल बाद पब्लिक शेयर वाली कंपनी बन गई, यानी जनरल पब्लिक से भी इसमें इन्वेस्ट करने को कहा गया। तब किसी को पता नहीं था कि आखिर ये है क्या। लेकिन उससे पहले संघर्ष भी बहुत होता है शुरुआती दिनों में जब पैसे नहीं होते थे। इनके गांव के एक बड़े लैंड ओनर से 4 लाख रुपए इन्होंने मांगे पर उसने कहा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, ये को...

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक। आज हम लेजेंड्स के सफर पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े ट्रेडर गोविंद राम सिकसरिया जी की, जो पूरे वर्ल्ड में छा गए थे, खासतौर पर 3 सिग्निफिकेंट एंड बिग कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। लेकिन कुछ टाइम बाद दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में अपना असर डालने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग से इतर इंडस्ट्रीज डालने की सोची। उन्होंने एक नई फर्म बनाई, गोविंद राम ब्रदर्स लिमिटेड। उन्होंने वेजिटेबल ऑयल बनाने की इंडस्ट्री, शुगर बनाने की, टेक्सटाइल्स, मिनरल्स, बैंकिंग, मोशन पिक्चर्स और प्रिंटिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमाए। हैदराबाद में पहली ऑयल मिल शुरू की, जिसमें कॉटन के बीज से ऑयल निकालने का काम शुरू किया गया। ये पहली दफा ही हुआ था जब जिन बीजों को वेस्ट समझा जाता था उनसे ऑयल निकालने का काम शुरू किया। यानी उनके पास आइडियाज थे, और आइडियाज ऐसे वैसे घिसे-पिटे नहीं, इनोवेटिव आइडियाज, और जज्बा भी था। और यही नहीं, वो बैंकिंग में भी कूद पड़े, भारतीयों के लिए इंडियन बैंक की उस वक्त जरूरत को देखते हुए, ताकि न सिर्फ उनको काम के लिए पैसा दिया जा सके बल्कि उनकी जमा पूंजी की हिफाजत भी हो सके। और उन्होंने सबसे पहले बैंक बनाया राजस्थान बैंक। बैंक की ब्रांचेस बॉम्बे और सेंट्रल इंडिया में काम करने लगी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आकाश से पाताल तक उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश की। पाताल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने माइनिंग में भी जाने का पूरा प्लान बना लिया था, और कोंकण के सावंतवाड़ी रीजन में माइनिंग का काम किया भी। माइका की माइनिंग की उन्होंने, और ये इलाके खाली पड़े थे, किसी पर इनका ध्यान ही नहीं था। माइका के बहुत बड़े डिपॉजिट्स थे इन जगहों पर। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन जहां न पहुंचे कोई भी आइडिया वहां पहुंचे सेठ गोविंद राम जी का आइडिया। ये अभी आप सुन लीजिए, ये होता था उस वक्त। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि क्या क्या बताऊं आपको, किस किस फील्ड की बात करें। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ चाचा चौधरी का दिमागी कंप्यूटर से तेज चलता है, अब मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी से सब पीछे ही हैं। तो चलिए यहां पर एक छोटा सा।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: धीरूभाई अंबानी एक ऐसा ट्रेडर जिसने भारत की विश्व नक्शे पर एक अलग पहचान बना दी। उन्हीं की कहानी और उन्हीं के कुछ आइडियाज और ट्रेड्स मैं आज आपको बता रहा हूँ। कैसे बिजनेस महज आपके दिमाग का खेल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत मेहनत भी होती है। शुरुआत में जो आपके साथी होते हैं वो आपसे अलग हो जाते हैं धीरे धीरे। धीरू भाई ने लेकिन उनके जाने का कभी शोक नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मुझे अपने साथ दिन रात खपने वाले लोग चाहिए, न कि ऐसे लोग जो सुबह क्लीन शर्ट पहनकर आए और रात तक क्लीन शर्ट पहनकर ही घर लौट जाएं। उन्हें दिमागदार बंदे चाहिए थे जिन्हें बाजार की जानकारी हो। उनकी वाइफ ने धीरू भाई के लिए अक्सर ही कहा कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। कहते थे किसी भी डील में कोई ढील नहीं, उसे झट से कर डालो। लोग कुछ और करने की सोचकर उस फील्ड में आते, उससे पहले धीरू भाई वो काम खत्म करके किसी और ही मैदान में कूद पड़ते, जैसे कोई जंग हो, हर पल नई, जहां बस जीतना ही है। अकॉर्डिंग टू धीरू भाई, मैनेज द एनवायरमेंट यू आर इन। यस, यही सही तरीका भी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। 100% की बात कही धीरू भाई ने, और यही स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो भी की। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को मैनेज करने के लिए हमेशा राइट बिजनेसमैन और राइट पॉलिटिशियन को अप्रोच किया। भले ही आइडिया उतना सटीक न रहा हो, लेकिन कनेक्शन बिल्कुल सही रहे। यह भी एक तरह की बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी थी उनमें। साल 1966 में तो गुजरात सरकार ने रिलायंस टेक्सटाइल को 125 एकड़ जमीन दी और वहां इनकी टेक्सटाइल मिल शुरू हुई। इन्होंने जिस धागे को इम्पोर्ट किया उसी से कपड़ा बनाना शुरू किया और इसका नाम रखा गया विमल, यानी एकदम प्योर और स्पॉटलेस।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ। शो चल रहा है लेजेंड्स द अचीवर सीरीज और मैं आपका दोस्त समर आज आपको सुना रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की कहानी। उनकी राह पर चलते हुए हम उनके पैरों के निशान बटोरते चल रहे हैं। विमल इंडस्ट्री शुरू हो गई थी, यहां तक मैंने कहानी आपको सुनाई। एक रोज धीरू भाई अंबानी की पत्नी की फ्रेंच शिफॉन की साड़ी वार्डरोब से गायब हो गई। उन्हें वो ढूंढे न मिली, वो काफी हैरान थी, परेशान थी। खैर साहब, कुछ दिनों के बाद उन्होंने वैसी की वैसी साड़ी पहने औरतों को बाजार में देखा आस पास। बाद में उन्हें पता चला कि उन्हीं की गुजरात वाली मिल में अब वैसी साड़ियां बन रही हैं। असली शिफॉन और उसमें फर्क करना मुश्किल होने लगा। खैर, इस दर्द को तो एक औरत ही जान सकती है, समझ सकती है कि उसकी जैसी साड़ी किसी और ने भी पहनी हो। वेल, 1975 में आते वर्ल्ड बैंक ने यह तक कह दिया कि एक ही कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है और वो है रिलायंस। और आप सोच भी सकते हैं कि ओल्ड टेक्सटाइल मिल्स पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। दो साल बाद राइवल्स की कंप्लेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ पॉलिएस्टर पर बैन लगा दिया, क्योंकि इल्जाम था कि गवर्नमेंट रिलायंस को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए काम कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि धीरू भाई के कनेक्शंस थे ही, उन्होंने पॉलिएस्टर बनाने में लगने वाले केमिकल को इम्पोर्ट किया और अब धागा भी खुद बनाने लगे। इससे पहले कि कोई और सोच पाता, धीरू भाई कर लेते थे। शायद यही वजह रही कि वो एकमात्र ऐसे बिजनेसमैन हैं जो भारत के बदलते भविष्य की कैटेगरी में आते हैं या फाउंडर्स में से आते हैं। खैर साहब, रिटेल स्टोर में एकमात्र फैब्रिक जिसने पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया था वो था विमल। धीरू भाई ने इसके लिए अब विदेशों में मार्केट तलाशना शुरू कर दिया। मिल में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, बाजार में डिमांड जब थोड़ा कम होने लगी तो उन्होंने एक दिन दिल्ली आए पॉलिश डेलीगेशन से बात की, रिलायंस मिल विजिट कराई और बहुत सारा कपड़ा वो लोग ले गए। तो वेल, इस तरह से रिलायंस अपने आप में एक ब्रांड बन चुका।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: लेजेंड्स के नए सेशन में जहां हम आपके लिए ले आए हैं कुछ अचीवर्स की कहानियां, कैसे उन्होंने न सिर्फ अपने देश के लोगों बल्कि विश्व भर में एक छाप छोड़ी, आज करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर की कहानी, और ये है आज धीरू भाई अंबानी, जिनके दोनों बेटे आज उनके साम्राज्य को न सिर्फ संभाले हुए हैं बल्कि उसे उन्होंने और भी नई ऊंचाइयां दे दी हैं। वेल, अब अंबानी पूरे पावरफुल हो चुके थे। एडवर्टाइजिंग पर उन्होंने बहुत ही काम किया, फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, मॉडल्स, सब एक ही बात करते थे, ओनली विमल। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई जिनका जिक्र हम यहाँ करना लाजमी नहीं समझते, क्योंकि हर आदमी के काम करने के क्रिटिक्स भी होते हैं। धीरू भाई के भी थे, लेकिन वो इतनी बड़ी शार्क बन चुके थे कि अब कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था। उनके राइवल्स धीरे धीरे पस्त होने लगे। 1990 में एक बार उनके ऑफिस पर जब छापा पड़ा, रेड पड़ी, तो उनके ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया। उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें कैबिनेट बजट के डॉक्यूमेंट थे। तब यही जोक पूरे मार्केट में था कि कैबिनेट ने अंबानी को बजट लीक नहीं किया बल्कि अंबानी ने कैबिनेट के लिए बजट लीक किया है। 1985 की उस मीटिंग की भी बात मैंने की थी जहां मीटिंग के लिए कोई उपयुक्त हॉल नहीं मिला था और मीटिंग रखी गई थी एक फुटबॉल स्टेडियम में। इसके ठीक बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स बनाने के लिए क्या क्या ना किया गया। लोगों को घर घर जाकर फॉर्म बांटे गए, हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराए गए। कैन यू इमेजिन, इट वॉज दैट बिग।
6: बाजू बाबू।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे यानी समर के साथ सुन रहे हैं लेजेंड्स। आज धीरू भाई अम्बानी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको बताया था कि धीरू भाई ने जिन कारनामों को अंजाम दिया वो इतने बड़े हैं कि इनको एक शो के अंदर समेट पाना लगभग नामुमकिन ही लगता है। वो दुनिया की बड़ी बिजनेस सेलिब्रिटी बन गए थे, कितने ही अवार्ड्स उन्हें मिले, उनके बड़े बड़े नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स से कनेक्शंस थे और इन सब ने उनको स्टार बना दिया था। ओवल चेहरा, अ स्माइल ऑन हिज फेस। कॉलेज के जमाने में एक जीप और कार के सपने देखने वाले धीरू भाई के पास एक बड़ी इम्पाला कार थी और न जाने कितनी कार्स थीं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक उनकी धूम मची रही। एक दफा जब उनसे काफी सारे बिजनेसमैन खफा थे, जेलसी रखने लगे थे कि वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, धीरू भाई अंबानी घबराए नहीं और उन्होंने सबकी एक मीटिंग बुला ली। सभी ट्रेडर्स से उन्होंने कहा कि आप में से जो भी ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस के लिए मेरे साथ कोई रابطہ ना रखा हो वो बताएं या मेरे पास ना आए हों। हम सब बिजनेसमैन हैं और बिजनेस ऐसे ही होता है, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और कनेक्शन से। सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सब जानते थे कि वो एक बड़ी शार्क हैं। छोटी मछलियां कुछ कर नहीं सकती, जीवन का यही कायदा है। बड़ी मछली के दायरे में छोटी मछली, डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत से परे ये सिद्धांत है समाज का। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी गुजर गए मगर अपने पीछे एक विरासत छोड़ गए रिलायंस के रूप में, जिसके लिए उन्होंने कहा, रिलायंस इज ट्रायंफ ऑफ ट्रूथ। आज उनकी विरासत को उनके बेटे संभाल रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं और धीरू भाई अंबानी वक्त का हसीन किस्सा बनकर उन लोगों की फेहरिस्त में है जिन्हें फाउंडर ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। चलिए फिलहाल के लिए आज इतना ही, एक और कहानी के साथ मैं लौटूंगा बहुत जल्दी। यहीं पर आप सुनते रहेगा लेजेंड्स समर के साथ। कैसी लग रही है नई सीरीज हमें जरूर बताएगा, हमारे फेसबुक पेज पर आकर इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिए। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाइए और कुछ ऐसा कर जाइए कि मैं भी आपकी कहानी सुनाने में फख्र महसूस करूं। तो आइए ये वादा करें एक दूसरे से कि हम सब मिलकर कुछ बड़ा करेंगे।

0: ना पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रात अकेली है
0: तो क्या हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: की लट्टी।
1: बोल पेट्रोल ते पवाए नहीं। कोई गल नहीं, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: रात अकेली है तो क्या हम तो

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, झट यमला पगला दीवाना।

दो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाए।

रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।

धुनक धुनक जब चुड़िया थनकी लहर लहर ओढ़निया लहकी धुनक धुनक जब चुड़िया थनकी धुनक धुनक जब चुड़िया थनकी लहर लहर ओढ़निया लहकी मृदंग ठनका धत धत धत धत नगिन धे धे छगन नदा दा किच धत धत धत छगन छग छग छगन का छगन का किच धत किच छग छगन का जी छग नदा ता धा किच छग छगन का ता धा मान गई दा।

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो जिस पथ पे चला।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, R-A-T रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे।

0: G-O-A-T goat, goat माने बकरी, L-I-O-N lion, lion माने शेर, अरदल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: M-A-D man, mad माने पागल, G-O-Y boy, boy

0: एक नहीं जहां में हंसी न होगा कोई हमका भी।
1: नोज़ नोज़ नोज़ माने नाक, CROW क्रो, क्रो माने कवार, मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ।
0: क्रिएटी कैट, कैट माने म्याऊ।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रात बाकी
2: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।

रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रात।

0: भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: टूना, ओ टूना,
2: क्या रे?

यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

0: शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

अपनी पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: यू नो वॉट, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो सेलिब्रिटीज है ना, इनके पास तो टाइम नहीं होता होगा अपना सोशल मीडिया चलाने के लिए। वो अपना कमेंट सेक्शन, अपनी टैगिंग, सब कुछ अपनी टीम से दिखवाते होंगे। तो भाई ये जो सोशल मीडिया पे जाकर सेलिब्रिटीज के कंटेंट के नीचे आप नेगेटिव कमेंट करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आप अपना गुस्सा कहीं और दिखा सकते हैं। एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है जब आपकी कोई अहमियत ही नहीं है वहां पर। हाँ, आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है एंड डेफिनेटली बातों की शुरुआत कर रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं चलते फिरते MRT में ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज की वीडियोस देख रही थी और उनके कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि अरे यार, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी हैं, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दिए हैं, क्या कोई उसे पढ़ने वाला है। हाँ, मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ उसमें से बातें ढूंढनी थी, लेकिन जिसको आप बोल रहे हैं वो नहीं पढ़ने वाला है, उसके पास टाइम ही नहीं है यार। सो यूज योर टाइम वाइजली। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
6: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
7: मैंने

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: दुनिया कितनी छोटी हो गई है ना। हाँ, मतलब हम यहाँ बैठ के कोरियन, चाइनीज और ना जाने कौन कौन से ड्रामास देख रहे हैं, और वहां लोग इंडियन ड्रामास कंज्यूम कर रहे हैं, और उनको हमारी चीजें अच्छी लग रही हैं और हमें उनकी चीजें अच्छी लग रही हैं। अरे अरे अरे, ऐसी थोड़ी ना कहते हैं कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। सो हेलो हाई, मैं आज मसीह मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, एंड द पॉइंट इज कि अब कौन सी नई चीज है जो अक्रॉस द नेशन पॉपुलरिटी बटोर रही है। धुरंधर मूवी, हाँ जी, रिलीजिंग इन जापान, अभी 10 तारीख को रिलीज होने वाली है, एंड डेफिनेटली इस मूवी को लेकर जो एक वो होता है ना एक्सपेक्टेशंस फिल्म डायरेक्टर्स के आदित्य धर की बहुत ज्यादा है कि जापानीज ऑडियंस को इसका इमोशन, इसका स्केलिंग और इसका एक्शन समझ में आएगा या नहीं आएगा। आज इन ऊपर मजी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, और मुझे जो गाने समझ में आ रहे हैं वो आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर।

0: नाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। ग्रोसरी की बात जब होती है तो इनका जिक्र आता ही आता है। कौन है वो जिनको आप पलट पलट के अपने मोबाइल के ऐप पर ढूंढते हैं? दैट इज ggmartonline.com। मतलब प्रीमियम कैशियोज हो, कैलिफोर्निया आमंड्स हो, पिस्ताचियोज हो, पम्पकिन सीड्स हो, मखाना हो, मतलब आपको हेल्दी मंचिंग करनी है, आपका परफेक्ट पार्टनर बन सकता है कौन? ggmartonline.com। और इनके दो प्रोडक्ट है सिग्नेचर, दैट इज गुलकंद, जो कि आप मुखवास की तरह, माउथ फ्रेशनर की तरह ले सकते हैं, या फिर जामुन ट्राइंगल्स जो आप कैंडी का रिप्लेस कर सकते हैं। ये दोनों ही स्वाद बहुत ऑर्गेनिक और नेचुरल शुगर के साथ आपको मिलेंगे। डू ट्राई दैट एंड विजिट ggmartonline.com। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com
4: ggmart your personal grocer.

0: were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment. आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए यूनिवर्स. नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. Check it out.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: लड़कियां हंसाने की हिम्मत रखती हैं क्या? लड़कियों की कॉमिक टाइमिंग कितनी एक्यूरेट हो सकती है? अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई ऐसा था जिसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अच्छी रही हो? हाँ, सोचो सोचो, कोई तो होगा। आरजे नुपुर बसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, रुलाने वाले तो एक्टर्स हमें बहुत मिले हैं, लेकिन हंसाने वाले एक्टर्स बहुत कम दिखे हैं यार। इसी के जिक्र में रवीना टंडन ने याद किया है लेट श्रीदेवी जी को। उन्होंने बोला है कि अगर हंसाने की बात आती है, कॉमिक टाइमिंग की बात आती है, एक सेंसिबल बातों की बात आती है, तो भाई श्रीदेवी की बात डेफिनेटली जहन में आती है। और बात तो ठीक है, श्रीदेवी के इमोशंस, आंखों के एक्सप्रेशंस, उनका वो पुरानी पिक्चरों में डरना, सहमना और फिर उभर के निकल कर आना सबको पसंद है यार। हाँ, आज भी आप उनकी पुरानी पिक्चर्स निकालेंगे ना तो आए हाय, डेफिनेटली आप उनके फैन बन जाएंगे। हाँ, श्रीदेवी फॉर अ रीजन। आज नुपुर मजी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं कि आप यहाँ बने रहें और इंजॉय करते रहें।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.